0: मिर्ची इट्स हॉट
1: इस्तकबाल ख्वातीनो हजरात, मिर्ची की इस महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और जिंदगी में याद रखना जितना जरूरी है दोस्त, मुझे ये पता चला कि उतना ही जरूरी होता है भूल जाना। अदीम हाशमी साहब का शेर है बड़ा खूबसूरत कि याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम, याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम, भूल जाने के सिवा अब कोई भी चारा ना था। लेकिन मुझे मजेदार बात यह लगती है कि जिसे भुलाने की आप कोशिश करेंगे ना, उसे भूलना उतना ही कठिन होता जाएगा। फिराक गोरखपुरी साहब का शेर है कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। तो दोस्त ये तो समझ आ गया है कि जवाब ढूंढने जाओ तो और सवाल ही मिलते हैं। बहरहाल मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Mirci, it's hot.
1: Mirci.
2: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. La vieta la burga. Mirci, burga.
3: हेलो
4: हाँ जी बोलिए
3: क्या बोलूँ जी
4: आप बोलिए ना
3: कॉल आपने किया आप बोलिए
4: कॉल मैंने किया है हेलो
3: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
4: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
3: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
4: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
3: नींद में है क्या
4: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
3: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
4: आ जाते उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
3: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
4: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
3: हेलो
4: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
3: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पर परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
4: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
3: फोन नहीं कर रहा अभी
4: आप देखिए बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से है ना मेरे चप्पल लेके आ रहा ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
3: चप्पल
4: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों
3: आराम कर दिया तुम जैसे
4: जीना बता रहा हूँ भाई यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना तो बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
3: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
4: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस
5: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस कृष्णा ज्वेलर्स लेडीज फर्स्ट चॉइस
7: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
8: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी
7: शादी शॉपिंग का कम्प्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़िलन
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं रिश्ते निभाने पड़ते हैं ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड इज़िलन न्यू जर्सी अपने घर में तो हर कोई शेर होता है मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155 लॉग ऑन टू lionmtg.com
11: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड इज़िलन न्यू जर्सी कंडीशंस अप्लाई

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू।
1: कि आप कताशी आपको रूबरू कराए आज एक ऐसे शायर से जो एक बहुत ही फेमस शायर के बड़े करीबी हैं लेकिन लाइमलाइट में नहीं है। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं सलमान अख्तर साहब की। अब आखिरी नाम से आप समझ गए होंगे, अख्तर तो बिल्कुल जी जावेद अख्तर जी के भाई हैं और लखनऊ में इनका जन्म हुआ 31 जुलाई 1946 में और अभी ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं। और इनका एक बड़ा ही खूबसूरत शेर जो मेरे जहन को बड़ा प्यारा लगा, मैंने पढ़ा हाल में और आपके नजर करूंगा। कहते हैं कि एक वही शख्स मुझको याद रहा, एक वही शख्स मुझको याद रहा जिसको समझा था भूल जाऊंगा। वाह जी वाह, क्या बात है। और जिंदगी में कई बार ऐसी होता है कि आप किसी से अपना इमोशनल कनेक्ट स्टैब्लिश कर लेते हैं और उसके बाद वो शख्स कभी आपके जहन से उतरता नहीं है। एक और शेर सुनाऊं आपको सलमान अख्तर साहब का जो मुझे बड़ा पसंद आया। लिखते हैं कि झूठी उम्मीद की उंगली को पकड़ना छोड़ो। वाह, झूठी उम्मीद की उंगली को पकड़ना छोड़ो, दर्द से बात करो, दर्द से लड़ना छोड़ो। आय हाय हाय हाय हाय, क्या मतलब, एकदम साइकोलॉजिकली परफेक्ट बात कह दी है। क्योंकि आपके थेरेपिस्ट भी आपसे यही कहते हैं कि रीअप्रेज करो अपने इमोशंस को, उन्हें रिप्रेस मत करो। झूठी उम्मीद की उंगली को पकड़ना छोड़ो, दर्द से बात करो, दर्द से लड़ना छोड़ो। बेहतरीन राइटर और खून में यार इनके तो। बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ एंड यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
2: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
1: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: ओह नो,
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
6: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
7: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
8: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपको आदाब अर्ज। और दोस्त जफर इकबाल साहब का एक शेर है जो मेरे जहन में घूम रहा है बड़े अरसे से। और शेर जब सच्चा होता है ना तो उसको याद करना नहीं पड़ता, वो याद हो जाता है। और ये शेर मेरी जिंदगी में कुछ उसी मकाम पे है। जफर इकबाल साहब लिखते हैं कि यहां किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू न मिला। हस्बे आरज़ू मतलब जैसा मांगा था, एग्जैक्ट सेम टू सेम। यहां किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू न मिला, किसी को हम न मिले और हमको तू न मिला। कितनी सिंपल, कितनी सटीक बात है। और यही तो सिंपल सटीक बातें जो होती है ना, वो आपको याद नहीं करनी पड़ती हैं, वो आपका दिमाग खुद ग्रैस्प करके रख लेता है कहीं ना कहीं। और ये शेर मेरी जिंदगी में तो उसी मकाम पे है। बहरहाल अगर आपका भी ऐसा कोई पसंदीदा शेर हो तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। बातचीत करने भी आ सकते हो। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: It's always such a pleasure when we've got artists at our show. क्योंकि बड़ा ही दिल को सुकून मिलता है, बड़ा ही दिल को एक खुशी मिलती है जब कोई भी कलाकार जिसने कोई नगमा गाया हो, बनाया हो, उसका हाथ लगा हो, उसका गला लगा हो, उसका दिमाग लगा हो, वो शो पर आता है और उसके बारे में बात करता है. हमारे साथ आज विपिन अनेजा जी हैं और विपिन अनेजा जी ने अभी हाल में मूवी आई थी मैं वापस आऊंगा, उसमें गाना गाया तेरे पास में और दैट सॉन्ग बिकेम वेरी वायरल, बहुत ज्यादा हिट हुआ वो गाना. उन्हीं से बातचीत चल रही है, देखिए.
3: हेलो, हाय विपिन, वेलकम टू द शो. कैसे हैं आप?
4: थैंक यू ताशी फॉर हैविंग मी. मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं वापस आ गया हूँ.
3: अरे जिंदाबाद. द प्लेजर इज ऑल माइन बाई टू हैव यू ऑन द शो. रहमान साहब के साथ काम करके व्हाट वॉज द एक्सपीरियंस लाइक?
4: तो ताशी, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद रहमान साहब, आज 20 साल हो चुके हैं. हम सब एक मुख्तलिफ साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और मुझे ऐसा लगता था कि काश रहमान भाई एक मेरी आवाज के लिए गाना बनाए. और उसके बाद में तेरे पास में पे हम आ गए और उनकी कॉल आई और उस एक्सपीरियंस को मैं शब्दों में कैसे ही बयां करूं कि जब मैंने वो कॉम्पोजिशन सुनी, उसकी दो वर्जन्स थी जो मैंने रिकॉर्ड करी चेन्नई में, जिसमें से ये वाली वर्जन अप्रूव हुई और फिर उसके लगभग मैंने 3 से 4 डिफरेंट लिरिक्स भी मैंने मुंबई में गाए. तो एक पूरा एक्सपीरियंस ऐसे था जैसे कि एक आप तराशते हैं जब किसी मूर्ति को और जब तक वो परफेक्शन उसका चेहरा एकदम शाइन करता है तब जाकर के रहमान भाई उसे सिलेक्ट करते हैं. अब समझ में आता है कि व्हेन प्रिपरेशन मीट्स द अपॉर्चुनिटी एंड व्हेन योर राइट टाइम कम्स और वो सही समय पर एक सही चीज आती है और उसको इस तरीके से तराशा जाता है और वो भी द जीनियस रहमान साहब, इरशाद कामिल एंड इम्तियाज अली साथ के साथ में, तो इसका रिजल्ट ये होता है, तेरे पास में बन जाता है.
1: हाँ जी बिल्कुल, तेरे पास में बन जाता है. दैट वॉज मिस्टर विपिन अनेजा, द सिंगर ऑफ तेरे पास में, एंड वी आर प्लेइंग हिज सॉन्ग ऑफ कोर्स. मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी आपके साथ, एंड दिस इज तेरे पास में. इट्स हॉट.

0: It's hot. Mirchi Bioscope. Saad Jeetu Raj. Jeetu Raj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you kyunki is film mein kahi chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahi bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kahi aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशा एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज
4: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
5: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
5: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
7: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
8: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
9: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी हर ड्राइव बनेगी यादगार

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ वेलकमिंग यू टू द शो अगेन इफ यू जस्ट जॉइंड अस। और दोस्त मोहब्बत भी ना बड़ी अजीब चीज होती है क्योंकि आप किसी से लड़ाई भी कर सकते हो लेकिन उस लड़ाई के दौरान भी आप उनसे प्यार में होते हो, मतलब यू लव देम बट यू आर फाइटिंग विद देम, समझ रहे हो। और लड़ाइयां हर रिलेशनशिप में होती हैं। एक बड़ा सटीक शेर मुझे मिला इस पे बासिर सुल्तान काजमी साहब का, और लिख जो गए हैं दोस्त एकदम जिंदगी का सच लिख गए हैं। कहते हैं कि गिला भी तुझसे बहुत है मगर मोहब्बत भी, गिला भी तुझसे बहुत है मगर मोहब्बत भी, वो बात अपनी जगह है, ये बात अपनी जगह। वाह जी वाह, ये हुआ ना कंपार्टमेंटलाइज करना। ओफो, गिला भी तुझसे बहुत है मगर मोहब्बत भी, वो बात अपनी जगह है, ये बात अपनी जगह। और जिंदगी में ऐसा होता ही है यार, रिलेशनशिप्स आर कॉम्प्लिकेटेड। वो जो फेसबुक में नहीं लिखा रहता था कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड, जो एक ऑप्शन होता था सिंगल और मिंगल्ड के अलावा वाला, एग्जैक्टली रिलेशनशिप्स आर जस्ट लाइक दैट। लेकिन हमारी रिलेशनशिप बड़ी सिंपल है यार। मैं आपको बढ़िया बढ़िया नगमे गजलें सुनाऊंगा और आप करिए मुझसे बातचीत मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे किस्सा कॉर्नर
1: कि आप कताशी करे आज का किस्सा आपके नजर और आज का किस्सा आ रहा है लखनऊ से। लखनऊ को कहा जाता है अदब का शहर और ज्यादातर लोग जब ये सुनते हैं तो उनके जहन में नवाब आते हैं और यूनो महफिलें आती हैं, लेकिन अदब की जो बात है वो ये है कि लखनऊ अदब का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो जनरल पब्लिक थी उसने अदब को इख्तियार किया था, उसने अदब को संभाल के रखा, उसे फॉलो किया था। जैसे मक्खन का एक किस्सा आता है लखनऊ से निकल के कि मक्खन बेचने का ये वक्त कहा जाता है कि जब सावन लग जाए, जब दिन बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाए दिन में, तो मक्खन का वक्त नहीं होता है। तो हुआ क्या कि एक साहब थे जो कि मक्खन का ही धंधा करते थे, अब वो मक्खन बेचने तो लाए लेकिन दिन में जो तपिश थी, दिन में जो गर्मी थी वो बढ़ गई और उन्हें ये बात बेईमानी लगी कि वो ऐसे मौसम में, क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों से सीखा था कि वो ऐसे मौसम में मक्खन बेचें, तो उन्होंने बेचा नहीं, वो वहां के जो गली मोहल्ले के जो बच्चे थे वो उनमें अपना मक्खन बस बांट गए। और एग्जैक्टली यही वो पॉइंट है कि जो नॉर्मल पब्लिक है, जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए लोग हैं, उन्होंने अदब को संभाल के रखा, इसलिए लखनऊ को अदब का शहर कहा जाता है। आज के वक्त में वो बात कितनी सच है, दैट इज ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू डिबेट, लेकिन आपका ताशी है आपके साथ, मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
1: अब मिर्ची खा.
0: Radio Mirchi, it's hot.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से
1: कि आप कताशी पलटे अपनी डायरी के सफ़े और कर दे आपकी नजर। और जिंदगी में ना कई बार ऐसा होता है कि आपके पास बैंडविड्थ नहीं होती किसी और के दुख किसी और के एक्साइटमेंट के पल में शामिल होने की। हाँ यार, कई बार ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा होता है ना, आपका खुद का वक्त इतना मुश्किल चल रहा होता है या फिर इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं कि आप सही मायने में किसी सामने वाले को वो रिस्पॉन्स या फिर वो एनर्जी दे ही नहीं पाते जिसकी वो एक्सपेक्टेशन लगा के आपके पास आते हैं। साहिर लुधियानवी साहब का एक बड़ा बेहतरीन शेर है, इस पे कहते हैं कि हम गम जदा हैं, लाए कहां से खुशी के गीत। हम गम जदा हैं, लाए कहां से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। कितनी प्यारी बात कहती है दोस्त, मतलब वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स मेरे ख्याल से। और अंग्रेजी की एक कहावत भी है कि यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। इसीलिए सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, खुद को वक्त देना, खुद के इमोशंस को प्रोसेस करना बड़ा जरूरी होता है इस जिंदगी में, क्योंकि यार अगर तुम ही नहीं खुश होगे तो खुशियां बांटोगे कैसे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहे अपने ताशी के साथ, यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और जिंदगी में ना बोलता हर कोई है कि यार बात करनी चाहिए, कभी अपने इमोशंस दबाने नहीं चाहिए, शेयर करना चाहिए सबके साथ। लेकिन मुझे लगता है कि सोसाइटली ये कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है या फिर बहुत टाइम मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप किसी को अपने दिल के अंदर की बात बता नहीं सकते यार। लोग ना बहुत जल्दी पर्सपेक्टिव्स बना लेते हैं, लोग आपके बारे में कोई इमेज बनाना चाहते हैं कई बार। और एक बड़ा सही शेर मुझे मिला, कहते हैं कि पता नहीं किसका शेर है, लेकिन कहते हैं कि किसी को कैसे बताएं जरूरतें अपनी, किसी को कैसे बताएं जरूरतें अपनी, मदद मिले ना मिले आबरू तो जाती है। क्या बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो तो कमी हो जाती है ना अगर आप किसी के सामने जाके बोलें कि यार बड़ी जरूरत है मुझे इस चीज की, क्योंकि वो मदद करे ना करे आपने बता दिया उसे, वो बोल देगा सॉरी यार मेरे पास भी अभी कुछ नहीं है, आप कहोगे अरे कोई नहीं यार सबका यही हाल चल रहा है ना, ऐसा करके और आप फिर बढ़ जाओगे आगे। मदद मिले ना मिले आबरू तो जाती है, किसी को कैसे बताएं जरूरतें अपनी, मदद मिले ना मिले आबरू तो जाती है। अहमद फराज साहब का भी एक बड़ा सटीक शेर है इसी मौजू पे, कहते हैं कि दुख फसाना नहीं कि तुमसे कहें, दिल भी माना नहीं कि तुमसे कहें, हर किसी से दिल की बात थोड़ी ना कही जाती है, मुझको अगर आप उस लायक समझें तो आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और लिटरेचर किस तरीके से विजुअल हो सकता है उर्दू अदब में एक नाम जो हमें उसका नजारा दिखाते हैं वो है गुलजार। अब आप गजल देखें उनके कुछ शेर देखें गजल से लिखते हैं कि हवा के सींग ना पकड़ो खदेड़ देती है हवा के सींग ना पकड़ो खदेड़ देती है जमी से पेड़ों के टांके उधेड़ देती है मैं चुप कराता हूं हर शब उमड़ती बारिश को मैं चुप कराता हूं हर शब उमड़ती बारिश को मगर ये रोज गई बात छेड़ देती है। और शेर देखें आपकी जमी सा दूसरा कोई सखी कहां होगा अब सखी यहां वो वाली सखी नहीं है जो दोस्त सखी होते हैं ये सखी है ख के नीचे नुक्ता है जिसका मतलब होता है बड़ा दिल वाला। ठीक है जमी सा दूसरा कोई सखी कहां होगा जरा सा बीज उठा ले तो पेड़ देती है। वाह जी वाह यार ये है ना देखो इमेजरी एकदम सामने चीजें दिखने लग जाती है जब वो गजल लिखते हैं कि हवा के सींग ना पकड़ो खदेड़ देती है जमीन से पेड़ों के टाके उधेड़ देती है मैं चुप कराता हूं हर शब उमड़ती बारिश को उमड़ती बारिश है ना कितने विजुअल मेटाफर्स इस्तेमाल करते हैं गुलजार साहब। बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल आपका ताशी है आपके साथ एंड यू नो व्हाट आई से इट्स हॉट

0: Mirchi, it's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot. 92.7
2: 92.7 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subah karein start chustiyon mein. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला.
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
3: अब मिर्ची खा.
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और वक्त हो चला है मेरे जाने का।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी था आपके साथ, बट इट्स टाइम फॉर मी टू गो। लेकिन जाने से पहले अपने दिल के करीब एक जो नगमा जो मैं रखता हूं आपके नजर करूंगा आज के ताशी अनप्लग्ड में, और ये नगमा है बावरा मन देखने चला एक सपना। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, जो सुधीर मिश्रा जी की डायरेक्टोरियल मूवी थी और स्वानंद किरकिरे जी की आवाज है, ओरिजिनली इसमें शांतनु मोहित्रा का म्यूजिक है एंड वन ऑफ माई फेवरेट्स। तो ज्यादा वक्त जाया करे बगैर बावरा मन देखने चला एक सपना।

रहा, मजा आ जाता है कुछ नगमे गा कर ही। बहरहाल अगर और ऐसे नगमे आप सुनना चाहते हो तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHI TASHI पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, आपसे मुलाकात होगी हफ्ते के उस पार। ताशी कहता है तब तक के लिए अलविदा। इट्स हॉट।

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Chari on your Mirchi.
1: Purane zamane ki one of the most beautiful and most talented actress Mumtaz. Mirchi sun rahe hain aap Purani Jeans par, main hu Charu aapke saath. Aur suniye ek podcast mein unhone apni family ke bare mein kya share kiya tha.
2: Very orthodox family, that is one of the reason my parents separated. Because when my father came from Iran, my mother became too modern and my father was very simple person. He had money. वो हिस्टोरिया होटल उनकी थी और ड्राई फ्रूट की बिजनेस थी उनकी. तो ही वाज वेल ऑफ बट ही वाज वेरी ऑर्थोडॉक्स. उनको नहीं पसंद था कि उनकी बीवी मॉडर्न हो. वो ना इत्तफाकी हो गई, दे वर नॉट गेटिंग ऑन एंड माय मदर वाज एंजॉयिंग टू ड्राइव कार एंड जीन्स पहनने लगे. वो तो गेट ऑन नहीं हुए. सो माय फादर सेड नो आई कांट टेक दिस, लेट्स हैव अ डिवोर्स. तो डिवोर्स में तो माय मदर सेड कि नहीं, मनी नहीं चाहिए, उसके अवज में मुझे मेरी बेटियां दे. तो वैसे भी मेरे फादर को लड़के चाहिए थे. वो समझते थे लड़के होंगे तो अच्छा है, लड़कियां शादी करके चली जाए, ऑर्थोडॉक्स. तो मेरी मम्मी ने कहा कि दो लड़कियां हैं, आप दूसरी शादी करेंगे तो शायद आपको लड़का हो जाएगा, तो लड़के मैं ले लेती हूँ. तो माय फादर सेड ओके. तो माय मदर ब्रॉट मी अप, माय ग्रैंडमदर ब्रॉट मी अप, माय आंट ब्रॉट मी अप.
1: और इसीलिए मुमताज शायद बन गई एकदम बेबाक और बिंदास. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ. आप सुन रहे हैं

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Charu on your Mirchi.
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ फिरोज खान एंड मुमताज जी। एक टाइम पे जब ये साथ में काम किया करते थे, इनके अफेयर के रूमर्स भी उड़ा करते थे। इस बारे में सुनिए एक रीसेंट पॉडकास्ट में मुमताज जी ने क्या शेयर किया था।
2: देखिए, फिरोज खान को तो पूरी दुनिया की औरतें प्यार करती थी, बट वी वर अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड। मैं तो उनको जेबीएच वाडिया के जमाने से जानती हूँ, जब उनकी खुद की एक एंग्लो इंडियन गर्लफ्रेंड थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। और फिरोज खान और शमी कपूर के अलावा मुझे आज तक फिल्म लाइन में कोई खूबसूरत हीरो लगा नहीं। इवन टुडे आई थिंक ये दो ही पर्सनालिटी थी जो बहुत हैंडसम थी हमारी फिल्म लाइन। काफी लोग थे जो बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन एक फिजिकल अट्रैक्शन जो होती है ना, मुझे इन दोनों से लगती थी व्हेन आई वाज वर्किंग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आदमी आपको अट्रैक्टिव लगे उसके साथ अफेयर हो। मेरा फिरोज के साथ अफेयर कभी भी नहीं था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट आई वॉज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ हिम एंड आई वॉन्ट लाई फिजिकली अट्रैक्टेड टू हिम। अफेयर कुछ नहीं हुआ मेरा उनके साथ।
1: चलो, क्लैरिटी मिल गई, अच्छी बात है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली।

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Chari. Only on Mirchi.
1: लोग ऐसा कहते थे कि राजेश खन्ना मुमताज जी के बीच में भी रिलेशनशिप था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ये कैसा रिलेशनशिप था, सुनिए पॉडकास्ट में मुमताज जी ने क्या शेयर किया था।
2: लोगों का क्या है, मैं आपसे एक बात बताऊं, जो भी हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री होती है ना, जब वो 8-10 फिल्में एक साथ करते हैं, सो दे नो ईच अदर सो वेल, दे बिकम ऑटोमेटिकली वेरी क्लोज, वो एक शाइनेस निकल जाती है, देखने से ऐसा महसूस होता है कि इनका कुछ चक्कर है, तो वो इंसान क्लोज हो जाता है, वो केमिस्ट्री जो हो जाती है, जिसकी वजह से जब एक दूसरे से बात करते हैं, हाथ गले में डालते हैं, कमर में डालते हैं, जैसे धक्का मारना हो, तो वो डरते नहीं है एक दूसरे से, नो फॉर्मेलिटीज, सो दे बिकम लाइक अ फ्रेंड। तो वो था मेरा पार्टनर के साथ, मैंने कितनी 10-15 पिक्चर लिखी और एक भी फ्लॉप नहीं हुई, हमारे सितारे मिलते होंगे साथ, अदरवाइज ऐसे कुछ नहीं है, अफेयर नहीं था मेरा। एंड वी वर नेबर्स, मेरा घर और उनका घर आजू बाजू में ही था, और अंजू तो पहले से उनके साथ थी। नो ही वॉज नेवर इन लव विद मी, ही वॉज विद अंजू व्हेन आई वाज वर्किंग विद।
1: सही बात है भाई, केमिस्ट्री सिर्फ रिलेशनशिप से थोड़ी ना होती है, अच्छी गहरी सच्ची दोस्ती से भी तो होती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची पर उसको साथ जीतूराज, जीतूराज only on मिर्ची, it's hot।
1: Hi, my name is Peter Parker।
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतूराज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। and for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: Spiders have three life cycles।
2: I just can't begin to tell you। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है, यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is। Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different। In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है, क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओह आल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने, वो क्या है। ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
5: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Chari on your Mirchi.
1: क्या ये बात सच है?
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये बात कि शशि कपूर साहब ने एक बार मुमताज जी के साथ काम करने से मना कर दिया था, सुनिए एक पॉडकास्ट में मुमताज जी ने क्या शेयर किया था।
3: यस, सच्चा झूठा में Everybody refused with me. Dara Singh ki heroine thi, ab to mujhe nahi kaam karna. That time he took 2 lakhs to give him for signing amount. His Shashi ji said no, change Mumtaz. He said sorry. He walked out. Why only Shashi Kapoor bichara? Whole industry refused.
2: To kya ye actors jinhone Mumtaz ji ke saath kaam karne se mana kiya, inhone kabhi aake unko aisa bola ki sorry ya us time aisa ho gya tha?
3: Nahi, ego hota na, mard logon ka ego bahut hota na. They are never wrong. They are always right. And that doesn't really matter. As far as they worked with me, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने काम तो किया। अब वो खोदते बैठो तो सुरंग का एंड ही नहीं होता, चलता है। Goes on and on in life.
2: क्या बात है? इस बात से तो यही समझ में आता है कि सोच भी बड़ी रखनी चाहिए और दिल भी बड़ा रखना चाहिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Chari. Only on Mirchi.
1: Late 60s ki one of the most talked about love stories, Shammi Kapoor ji and Mumtaz ji. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ. और सुनिए पॉडकास्ट में मुमताज जी ने क्या शेयर किया था कि कब उन्होंने शम्मी कपूर जी को पहली बार देखा था.
2: जब मैं दिल देखे देखो की शूटिंग पे गई थी मेरी बहन के साथ शूटिंग देखने के लिए, जब मैं 10 स्कूल से छुट्टी 10 11 की होंगी, मेरी बहन खुद 13 14 की थी, बहुत छोटी थी. तो मैं जाके जब सेट पर बैठी तो मैंने उनका गाना चल रहा था तो मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छे लगे शम्मी जी. तो मैंने कहा मलका मेरे को इससे शादी करना है. तो मेरी बहन बोली पागल, उसकी शादी हो चुकी है, उनकी वाइफ का नाम है गीता बाली. मैंने बोली हो गई शादी? मैंने हाँ हो गई, मगर मुझे इसी टाइप के आदमी से शादी करना है. बोली ठीक है इंशाल्लाह, अगर तेरे नसीब में होगा हो जाएगा. तो मैं 10 साल की उम्र से उनको पसंद की थी, ऐसा नहीं कि अभी की थी.
1: ये कहानी आगे कैसे बढ़ी, क्या हुआ, सुनते हैं थोड़ी देर के बाद. राइट हियर पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची.
3: यूं ही तुम मुझसे बात

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans. Purani Jeans. With Charu. Only

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Charu on your Mirchi.
1: मुमताज जी ने शम्मी कपूर जी को पहली बार दिल दे के देखो फिल्म के सेट्स पर देखा था और पहली नजर में प्यार हो गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन तब सिर्फ मुमताज को हुआ था, वो भी बचपन वाला प्यार, क्योंकि तब वो सिर्फ शायद 11 साल की थी और उस फिल्म के सेट्स पर आई थी क्योंकि मुमताज जी की जो बहन थी वो भी उस फिल्म में एक रोल कर रही थी। इसके 10 साल बाद मुमताज जी को मौका मिला शम्मी जी के साथ ब्रह्मचारी फिल्म में काम करने का। सुनिए एक पॉडकास्ट में मुमताज जी ने क्या शेयर किया था।
2: जब मैं बड़ी हुई फिर मुझे ये पिक्चर मिली, उस वक्त गीता जी गुजर गए थे, गीता बाली जी गुजर गए, तो ही लाइक मी, आई लाइक हिम, वी वर देयर विद ईच अदर फॉर 2-3 इयर्स, आई वुड से एटलीस्ट 3 इयर्स। 3 साल के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो मैंने कहा ओके आई एम रेडी टू मैरी यू। देन उन्होंने कहा कि काम तुम नहीं कर सकती, और मैं इतनी एम्बिशियस थी, और वो शमी जी 17 साल कुछ बड़े थे मुझसे, और मेरी मम्मी बोलती थी बहुत बड़ी एज है और बहुत लड़कियां इधर उधर पीछे हैं, तुझे खुश नहीं रखेंगे वो। तो मैं शमी जी को बोलती थी लीव हर, आई एम गोइंग टू मैरी यू, मगर काम करूंगी। तो शमी जी ने बोला काम नहीं कर सकती, बोले हमारे कपूर फैमिली के अंदर बहू नहीं करती है फिल्मों में, और उस जमाने में नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा यू कांट, तो मैंने कहा देन शमी जी ओन वर्क, बिकॉज आई लव माई जॉब, आई लव माई वर्क एंड आई वॉन्ट टू बी समथिंग इन माई लाइफ।
1: वेल, फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरीज में से एक है मुमताज जी और शमी जी की लव स्टोरी, और मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स में से एक है इन दोनों पे पिक्चराइज्ड ये गाना पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: पुरानी जींस मुमताज स्पेशल विद चारू उंगलियों मिर्ची।
1: मुमताज जी और शम्मी कपूर जी कुछ 3 साल तक एक रिलेशनशिप में थे। उसके बाद शम्मी जी ने मुमताज जी को प्रपोज भी किया, मुमताज जी ने हाँ भी की, लेकिन जब ये कंडीशन आई कपूर खानदान की तरफ से कि शादी के बाद वो काम नहीं कर सकती, तब मुमताज जी ने मना कर दिया, क्योंकि तब उनके करियर की शुरुआत ही हुई थी और वो काफी कुछ अचीव करना चाहती थी। लेकिन जो भी वजह रही हो, रिश्ता टूटता है तो दिल भी टूटता है। एक पॉडकास्ट में सुनिए उस टाइम के बारे में उन्होंने क्या शेयर किया था कि किसने उनको संभाला, हिम्मत दी।
2: माय मदर डाइड वेरी यंग व्हेन आई वाज डूइंग विशांतरम पिक्चर, शी डाइड देन डिलीवरिंग माय वन ऑफ माय ब्रदर। आई वाज ब्रॉट अप बाय माय आंट, माय रियल मदर वाज माय आंट। तो आंटी मुझे बहुत प्यार करते थे, माँ से ज्यादा प्यार करते थे, और वो हमेशा मुझे देखते ही बोलते थे, क्या हुआ, तो खुश है ना? मैं यहाँ ना खुश हूँ, तू लग रहे ही नहीं है। एंड मेरी सिस्टर थी, मेरी बहन वॉज ऑलवेज लाइक अ रॉक, माय आंट वॉज लाइक अ रॉक। एंड देन आई हैड नो टाइम टू थिंक अबाउट वन थिंग, आई वॉज सो बिजी। 7 to 2, 2 to 10, 7 to 2, 2 to 10 till I got married. तो अभी बैठ के किसे गाने याद करूं, डायलॉग याद करूं, कि क्या अभी क्या करूं? So I was okay. कितना भी इंसान प्यार करे, वो जख्म भर तो जाते ही है ना।
1: वो एक शेर था कि वक्त हर जख्म को भर देता है, कुछ भी कीजिए याद रह जाती है हल्की सी चुभन की हद तक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निखार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
3: ना, ना, ना।

0: प्यार है,
1: अरे बाबा है।
0: तुम
2: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Pirani Jeans with Charu, only on

0: पुरानी जींस मुमताज स्पेशल विद चारू उंगलियों मिर्ची।
1: मुमताज जी ने अपने करियर में दो बहुत बड़ी फिल्में रिजेक्ट की थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक रिजेक्ट की थी पैसे की वजह से और दूसरी रिजेक्ट की थी प्यार की वजह से, एक्चुअली जो प्यार पूरा ना हो पाया उसकी वजह से। ये फिल्में थी सीता और गीता और अंदाज। सुनिए पॉडकास्ट में उन्होंने इसके बारे में क्या कहा था।
2: देखिए, अभी 6.5 लाख में लेती थी उस जमाने में, अब 2 लाख में मैं कैसे करूँ। रमेश जी ने मुझे बोला 2 लाख, 1 लाख गीता का, 1 लाख सीता का। तो मैंने कहा नहीं, आई डोंट थिंक आई विल वर्क इन 2 लाख। गीता और सीता तो मैंने प्राइस के लिए रिफ्यूज की थी, और वो दूसरी पिक्चर जिसमें हेमा जी थी, वो गाना है ना दिल जिसे दो, अंदाज, बिकॉज शमी कपूर वॉज द हीरो।
3: तो दैट इज द रीजन आई डिडंट वर्क, अदरवाइज इट वाज ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, वेरी वेल रिटन, बट दैट इज द ओनली रीजन, देयर वाज नो अदर रीजन।
2: मुझे ये दो पिक्चर के बाद में लोगों को पता चल गया फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि मुमताज और शमी जी, मैं शमी जी तो बेचारे कभी मना नहीं किए, जो क्यों बोलो, मुमताज शमी जी के साथ काम नहीं करती, इसलिए मुझे ऑफर आए ही नहीं।
1: वेल इन केस यू डोंट नो, तो मुमताज जी और शमी जी 3 साल तक एक रिलेशनशिप में थे। शमी जी ने शादी के लिए प्रपोज भी किया, लेकिन उनकी एक कंडीशन थी कि शादी के बाद वो काम नहीं कर सकती। ये शर्त मुमताज जी को मंजूर नहीं थी, तो उन्होंने मना कर दिया, और इसीलिए उनका रिलेशनशिप थोड़ा सा बिटर नोट पे एंड हुआ था। खैर, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन

0: पुरानी जींस मुमताज स्पेशल विद चारू उंगलियों मिर्ची
1: बोल्ड बेबाक बिंदास मुमताज जी मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। मुमताज जी पुराने जमाने की वन ऑफ दोज एक्ट्रेसेस थीं जिन्होंने बिकिनी पहनने की बोल्डनेस दिखाई थी फिरोज खान की फिल्म अपराध में। पर क्या उसके बाद बाकी के और फिल्म मेकर्स प्रोड्यूसर्स ने उनको ऐसे इंसिस्ट नहीं किया कि उनकी फिल्म में भी वो बिकिनी पहने? सुनिए एक पॉडकास्ट में इसके बारे में उन्होंने क्या शेयर किया था।
2: मुझे वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई क्योंकि दैट टाइम आई वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्ट्रेस, सो आई कुड अफोर्ड टू से नो मुझे नहीं पहनना। और मैंने फिरोज को प्रॉमिस भी किया था कि फिरोज मैं ये आपके लिए कर रही हूँ, उसके बाद मैं कभी बिकिनी नहीं पहनूंगी। फिरोज खान वॉज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, व्हाट अ लेंस की आईज थी वो इंसान की। उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुझे पेश करूंगा, अगर तुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं काट दूंगा। मैंने बोला प्रॉमिस, ही सेड प्रॉमिस। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था अपने फिगर में बिकॉज आई ऑलवेज हैड अ हैवी ईरानियन थाइज, सो आई हैड कॉम्प्लेक्स कि मैं मोटी लगूंगी बिकिनी में। तो उन्होंने मुझे रैशेज दिखाया, मैंने बोला नहीं फिरोज आई एम हैप्पी यू कैन कीप इट। तो दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट, आई नेवर वोर बिकिनी। आए थे प्रोड्यूसर, आई सेड नो।
1: भाई बिकिनी पहनकर उस टाइम पे मुमताज जी ने शायद एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया हो, लेकिन सच ये है कि ट्रेडिशनल कपड़ों में साड़ी में भी वो उतनी हॉट, एक्चुअली उससे ज्यादा हॉट और ब्यूटीफुल लगती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जींस मुमताज स्पेशल विद चारू उंगलियों मिर्ची।
1: पुरानी हिंदी फिल्मों में वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फैशन स्टेटमेंट कौन सी ड्रेस ने बनाई थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई ऐसे तो देखिए बहुत सारी ड्रेसेस हैं, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट की हम बात करें तो वो है ब्रह्मचारी फिल्म में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे गाने में जो मुमताज जी ने साड़ी पहनी थी ऑरेंज कलर की, और एक्चुअली जिस तरह से पहनी थी उसकी बात ही कुछ और है। वेल कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी भानु अथैया, और एक पॉडकास्ट में सुनिए मुमताज जी ने इसके बारे में क्या कहा था।
2: आई थिंक लियो लोग का शेर जो है उनके ऑरेंज ही होते हैं, फेवरेट तो मेरा भी फेवरेट था, लेकिन भानु अथैया डिड हार्ड वर्क, शी इन्वेंटेड समथिंग वेरी डिफरेंट जो आज भी लोग कोशिश करते हैं कि पहने वैसे, तो सहरा उनको जाता है, मेरा तो सिर्फ कलर था, बट शी वाज द वन हु वर्क्ड हार्ड।
1: अच्छा एक और चीज जिसके लिए मुमताज जी जानी जाती हैं वो उनकी डांसिंग, तो क्या उनको ऐसे लिबर्टी मिलती थी कि वो इम्प्रोवाइज कर सकें, अपने स्टेप्स डाल पाएं?
2: हमारे जमाने में हमको वो सब मिलता भी नहीं था, इधर सीखो इधर करो, सीखो इधर करो, बिकॉज आई वाज सो बिजी। जो भी मास्टर ने सिखाया वो कर लिया हमने, बस जहाँ कैमरा रखते थे डायरेक्टर साहब के थे कि यहाँ पर वी हैव टू डू दिस, सीख लेते थे और कर देते थे, दैट्स इट। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था, वी आर वेरी ओबीडियंट, करना पड़ता था हर चीज, कोशिश यही रहती थी कि जो भी करो अच्छा करो।
1: अच्छा उसे अच्छा नहीं उसे कमाल कहते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
3: पुरानी जीन्स विद चारू।

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Chari only on Mirchi.
1: आजकल तो जब फिल्मों की शूटिंग होती है तो स्टार्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनके मेकअप मैन, उनके हेयर ड्रेसर, उनके पर्सनल ट्रेनर सब उनके साथ रहता है। वैनिटी वैन में अच्छा खासा घर बसा हुआ होता है। लेकिन एक पॉडकास्ट में सुनिए मुमताज जी ने क्या शेयर किया था कि पहले के टाइम में जब ये फैसिलिटीज नहीं होती थी तब इनडोर और खास करके आउटडोर शूटिंग वगैरह में कैसे सब मैनेज होता था।
2: वैनिटीज नहीं थी लेकिन हमारा मेकअप मेरा परमानेंट था, हेयर ड्रेसर मेरी परमानेंट थी, गाड़ी मेरे पास अल्लाह के फजल से थी। दे यूज्ड टू कम इन द मॉर्निंग, दे मेक मी रेडी इन माय बंगलो एंड आई यूज्ड टू गो फॉर शूटिंग। हाँ, इतनी कंफर्ट नहीं थी। अगर आपको बाथरूम जाना हो जंगल में तो लड़कियों को ले जाना पड़ता है कि पर्दा करो तो मैं जाऊँ। कैसे जाएंगे, जय श्री शंकर का देखिए ना, कहाँ जाऊँ मैं बाथरूम। बट देन आई टोल्ड माय ड्राइवर यू कम एंड देन माय हेयर ड्रेसर केम एंड वन ग्रुप डांसर। साड़ी लेके जाके दूर जाओ जाके फिर एक वो पकड़ रहे, वो पकड़ रहे among the girls, so all the three girls I used to do pipi, then I used to say you want to go, like yes you want to go, fir baad mein kaun utna chal ke aayega, aisa hamara haal tha. Abhi to log bahut comfortable hai, very lucky I would say to have vanity. Hamare yahan to garmi mein maro, air condition kahan se milega tumko outdoor mein.
1: Sahi baat hai. Isi baat pe jay jay shiv shankar gana sun lete hain. Purani jeans par main hu charu aapke saath, aap sun rahe hain mirchi.

0: सारे गा मा वन टू थ्री फोर सारे गा मा सारे गा का सारे मा मंगा रे सारे गा मा सारे गा का सारे मा मंगा रे मंगा रे मंगा रे मंगा रे मंगा रे
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर साथ जीतूराज only on Mirchi it's hot.
2: Hi, my name is Peter Parker.
3: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
4: spiders have three life cycles
3: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशा एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं, वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: लिसनर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: कालिया
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
3: अरे यू के बड़ा कोरी भाई बजा।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Oh, okay then. Spider-Man brand new day aa gayi hai. And for God's sake, please, theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you. Kyunki is film mein kahin chhoti-chhoti aisi cheeze hain. Especially jab characters aapas mein baat karte hain, to unki whispers, unka pyaar, unka ghussa, wo theater mein jo maza deta hai, wo kahin bhi nahi dega. And for God's sake, kisi se bhi story mat suno. Don't take any spoilers. Film mein kahin aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओह आल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। रेडियो मिर्ची, इट्स
1: ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: गायत्र्यास्तु परम नास्ते, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा है। जो कोई इस मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है, उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए इस महामंत्र का प्रारंभ वैदिक रीति से करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरण।

ध्यानम। अब हम गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरे अजरे अमरे मातः त्राहि माम शरणागतम। ओम। हे सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। आप इस सौर मंडल के अधिपति सूर्य के भी संपूज्य हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा दो।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बने, आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो आपने कहा उनको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब एक सामने वाला, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि सामने वाला से मुझे बहुत इमोशन मिल रहा है, कहीं ना कहीं मैं अंधी हूँ उसके प्यार में और मुझे लग रहा है कि सारा प्यार तो यहाँ से मिल रहा है, अब मैं इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए क्या करूँ?
4: प्यार लेना नहीं है ना, प्यार देना है। और अगर आपको प्यार देना है तो वो प्यार आपको अपने अंदर से, लव एक ऐसा इमोशन है, आई एम पीस एंड आई एम लव, मुझे वो चाहिए नहीं है। ये रियलाइजेशन
3: कि आई एम पीस आई एम लव,
4: आई एम पीस आई एम लव, एंड द मोमेंट आई स्टार्ट गिविंग आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव। मुझे अगर आपसे प्यार से बात करनी है तो वो पहले इमोशन कहाँ से होकर के जाएगी
3: मेरे अंदर?
4: अगर मुझे गुस्सा करना है तो पहले मुझे उस अग्नि में जलना पड़ेगा। अगर मुझे किसी से प्यार से चलना है, सो आई विल रिसीव इट फर्स्ट एंड देन आई विल गिव इट टू यू, दैट इज ट्रू लव। ये तो क्या हो रहा होता है, बिजनेस हो रहा होता है,
3: ट्रांजैक्शन।
4: हाँ, इट इज नॉट इवन लव। आप ऐसे करेंगे तो मैं ऐसा करूंगा, आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूंगा, सो इन अ वे आई एम एम्प्टी। और मुझे लगता है इफ आई डू इट अ सर्टेन वे, रिवॉर्ड में मुझे कुछ मिलेगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: कभी कभी लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर क्यों नहीं आ पाते, आइए इस पर बात करते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो आप कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मुझे प्यार देना सीखना पड़ेगा, सिर्फ प्यार लेना नहीं सीखना पड़ेगा। और दूसरी चीज, जब मैं इसमें फंसी हुई हूँ, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं अब मुझे रियलाइज हो गया, किसी ने मुझे बता दिया कि ये तुम्हारा एडवांटेज ले रहा है, तुमको कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारी जिंदगी से तुमको सबको काट दिया, तो दूसरे केस में इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए और क्या करूं?
4: पहले तो रियलाइज हुआ है कि नहीं?
3: जी, हो गया।
4: एक होता है कि आसपास सबको रियलाइज हुआ है,
3: वो भी होता है कि हमें रियलाइज ही नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं यही है हमारे भगवान, हम ऐसे ही रहेंगे।
4: दैट इज द फर्स्ट थिंग, एवरीबॉडी अराउंड कैन सी। वो लोग तो देख पाते हैं कि ये उसके अंदर फंसा हुआ है, पर उनको वही कंफर्ट जोन लग रहा होता है। वो डिप्लीट भी हो रहे होते हैं, एक्सप्लॉइट भी हो रहे होते हैं, बर्नड आउट भी हो रहे होते हैं, सफर भी कर रहे होते हैं, देन ऑल्सो दे डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप। क्योंकि समवेयर जैसे एडिक्शन होता है ना, आपको पता भी है कि शरीर का नुकसान कर रहा है, पर वही आपको हाई भी दे रहा होता है, तो आप अपना नुकसान भी करते जाते हैं फॉर दैट ब्रीफ मोमेंट ऑफ हाई। सो रिलेशनशिप में भी कई बार ऐसा होता है कि वो आपका फायदा भी उठा रहे हैं, बट देन स्टिल फॉर दैट लिटिल बिट ऑफ अप्रिसिएशन, दैट वन लाइन,
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: रिलेशनशिप में हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर क्या होता है, आइए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मैं पढ़ रहा था, एक साइकोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर सूजन समथिंग, वो कहती हैं कि ये जो है इसको हॉट एंड कोल्ड कहते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन में एक तरीका होता है हॉट एंड कोल्ड, कि सामने वाला मुझे बहुत प्यार से बात करता है तो दे आर वेरी हॉट उस समय, और फिर अगले ही क्षण में या अगले ही दिन बहुत कोल्ड हो जाते हैं, जैसे हम मैटर ही नहीं करते उनके लिए। तो हमारा जो ब्रेन है वो इसको ऐसे परसीव करता है जैसे डोपामिन शॉट होता है जब हम कोई भी वीडियो देखते हैं एक्सेट्रा, तो हमारे ब्रेन में डोपामिन शॉट जाता है जब वो बहुत हॉट होते हैं हमारे साथ, बहुत प्यार से बात करते हैं। तो अब फिर जब वो कोल्ड होते हैं हमारा, हम वी गो थ्रू एन इमोशनल साइकिल जहां सडनली हम नीचे आते हैं, फिर सडनली डोपामिन शॉट, तो फिर हम ऊपर जाते हैं। अब ये ऊपर नीचे एडिक्शन की आदत हमको पड़ गई और ब्रेन हमेशा वेट करता है कि अगला शॉट कब मिलेगा,
4: कब मिलेगा।
3: और इसलिए आप जो कह रही हैं, कुछ लोग हैं जिनको रियलाइज ही नहीं होता, क्योंकि शायद रियलाइज हो भी जाए लेकिन अब उनको आदत पड़ गई है,
4: डिपेंडेंसी
3: की, अब वो आएगा और मेरी जिंदगी में भरपूरता भरेगा और मैं पूरी हो जाऊंगी या पूरा हो जाऊंगा, तो वो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। तो ऐसे केस में जहाँ पता ही नहीं चला, रियलाइज ही नहीं हो रहा हम डिपेंडेंट हो गए, वो बाहर कैसे निकलें?
4: उनको अपने साथ एक रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। बाहर रिश्ता बाद में जोड़ना चाहिए, पहला रिश्ता होता है अपने साथ
3: जी,
4: दूसरा रिश्ता होता है परमात्मा के साथ
3: जी,
4: फिर जब आप भर जाते हैं तो रिश्ता होता है औरों के साथ। दैट वे वो कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज अब वो रिश्ता है देने के लिए। अगर आप वो रिश्ता सीधा बाहर ही जा रहे हैं, ना आपका अपने साथ कोई रिश्ता है ना परमात्मा के साथ रिश्ता है, देन डेफिनेटली आपको कोई ना कोई एक्सप्लॉइट कर लेगा।
3: हाँ।
4: क्योंकि आप अंदर से खाली हैं, आपको वहां से मिलेगा तो वो आपका एडवांटेज भी तो उठाएंगे। सो शी नीड्स टू स्टेप बैक अ लिटिल एंड नीड्स टू स्पेंड सम टाइम विद हरसेल्फ।
3: पहली चीज,
4: टॉक टू हरसेल्फ, वैल्यू हरसेल्फ, अपने वर्थ को पहचाने,
3: ये बहुत जरूरी है। सेल्फ एस्टीम बहुत जरूरी है, अपने वर्थ को पहचाने, अपने आप को प्यार दें, अपने आप से बात करें, ये बहुत जरूरी है।
4: अपने प्रति काइंड और कंपैशनेट होना जरूरी है ऑल साइड्स। हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस हैं, परफेक्ट नहीं है। कोई दिन गलती करते हैं तो भी अपने से प्यार करना
3: जी,
4: कोई दिन बहुत अचीव किया तो भी अपने से प्यार करना, अपने को पुट डाउन नहीं करना। सी व्हेन आई टेक केयर ऑफ माय सेल्फ देन आई डोंट नीड यू ना टू कीप सेइंग अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। इतनी अप्रिसिएशन की भूख क्यों होती है?
3: सेल्फ वर्थ ज्यादा जरूरी है, दूसरों की हमें चाह की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
4: जो लोग बहुत क्रिटिकल इन नेचर होते हैं ना, सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं, उनको प्यार बहुत चाहिए।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: क्योंकि वो खुद से तो क्या कर रहे हैं, अपने को तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। कई लोग अपने प्रति एक तरह से ऐसा क्रिटिकल होना ठीक है कि यू रियलाइज एंड यू ट्रांसफॉर्म,

0: पर एक क्रिटिसिज्म कैसा होता है, कॉन्स्टेंटली तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुमसे तो कोई काम हो नहीं सकता, अपने को ही गिराते रहेंगे।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा सही कह रही हैं आप, और ऐसा होता भी है।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा, मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का, उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
1: एक सवाल आया है सिस्टर श्रेया, कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप लोगों के पास हर सवाल का जवाब होता है, क्या आप ये बता सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स दुनिया, मुश्किल सिचुएशंस और चैलेंजिंग लोगों के बीच स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जी सकते हैं?
0: पहले तो जो वो कह रहे हैं कि लाइफ इतनी
1: स्ट्रेस भरी है, कॉम्प्लेक्स दुनिया है और मुश्किल सिचुएशंस हैं।
0: देखो, किसी को ये दुनिया बहुत ब्यूटीफुल लगती है,
1: हाँ बिल्कुल,
0: किसी को ये दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है, किसी को उसी चैलेंज के अंदर ग्रोथ दिखाई देती है, किसी को वही चीज प्रॉब्लम लगती है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा देखने का नजरिया है।
1: बिल्कुल,
0: हमारी सबकी लाइफ थोड़ी सिमिलर सी है, माना उसके अंदर सुख भी है, दुख भी है, हार भी है, जीत भी है, चैलेंजेस भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, सफलता भी है, हार भी है। लगभग लगभग सबकी लाइफ यही होती है, लेकिन वही लाइफ हर एक को अलग लगती है, क्योंकि हर एक के देखने का
1: तरीका
0: अलग अलग है। जो अंदर से भरा होता है उसको हर चीज के लिए ग्रेटफुल होता है, जो अंदर से खाली होता है वो हर चीज के लिए कंप्लेन और ब्लेम करता रहता है। तो अगर आप थोड़ा सा नजरिया बदलेंगे तो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, काफी ब्यूटीफुल है। और अगर स्ट्रेस है तो फिर अगेन स्ट्रेस पेन है, माना आप हर चीज को देख रहे हैं, जैसे वो एक कहानी सुनाते हैं कि माना एक राजा था और उसके साथ मंत्री था, तो वो शिकार के लिए गए, तो जैसे शिकार पर गए तो वो राजा से थोड़ी गलती हुई और वो उसी का ही अंगूठा कट गया।
1: हाँ।
0: जब वो चला रहा था तो उसी का ही अंगूठा कट गया, तो जो मंत्री था वो बहुत ही जैसे कहें वाइज था, तो उसने कहा कल्याण है, कल्याण है, इसमें भी कल्याण है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो ये सुनकर के राजा को तो बहुत गुस्सा आ गया कि मेरा अंगूठा कट गया और मेरा ही मंत्री कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इसमें कल्याण है। तो उसने गुस्से में कहा इसको जेल में डाल दो। तो जैसे उसने कहा उसको जेल में डाल दो, तो भी उसने कहा अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसमें भी कुछ कल्याण है, तो राजा को और गुस्सा आया। खैर, वो कुछ दिनों के बाद वापस शिकार पर गया और अब जो उसके सेनापति थे वो पीछे रह गए, वो अकेले ही जंगलों में काफ़ी आगे चला गया, भटक गया। वहाँ पर कोई दूसरा भी राजा आया हुआ था किसी राज्य का, उसको किसी ने कहा था, जो कहानी में सुनाते हैं कि किसी गुरु ने कहा था, आपके घर में जब संतान होगी तो आपको बलि चढ़ानी है। तो वो शिकार के लिए आए हुए थे किसी की बलि चढ़ाने के लिए और इनको ये राजा मिल गया। तो उन्होंने कहा जानवर से बलि चढ़ाने से तो अच्छा है, मनुष्य की बलि महाबली हो जाएंगी, तो बंदी बना लिया इस राजा को। लेकिन जैसे ही देखा कि अंगूठा कटा हुआ है तो कहा कि नहीं, इनकी बलि नहीं चढ़ा सकते क्योंकि खंडित है, बलि उसी की चढ़ सकती है जो पूरा
1: पूर्ण है,
0: पूर्ण होना चाहिए। तो राजा को एकदम वो बात याद आई,
1: कल्याण,
0: अच्छा कल्याण है, कल्याण है, बहुत अच्छा है। तो फिर उसको लगा, उसको अंदर में लगा कि मंत्री ने ठीक कहा था, पर उसको ये बात समझ में नहीं आई कि मैंने जब उसको जेल में भेजा
1: तब क्यों कहा
0: उसने इसमें भी कल्याण है। तो कहा उसको बुला करके लाओ, उसको पूछा, सारी कहानी उसको सुनाई, कहा तुमने जो कहा कल्याण है, नहीं तो आज तो मैं मर जाता। तो फिर मंत्री ने हंस करके कहा, देखो आपका अंगूठा कटा था, आपको तो छोड़ देते, मैं मंत्री आपके साथ होता, सेनापति तो पीछे है, अब वो आपको छोड़ते और उनको बलि के लिए कोई चाहिए था तो अगला मैं ही होता, इसलिए भगवान ने पहले ही मुझे जेल में
1: बहुत बढ़िया
0: डाल दिया जिससे मैं भी बच गया। नाउ दी स्टोरीज जो हम भक्ति में सुनते थे उसका क्या भाव होता था कि आपके जीवन में कोई भी सीन है, आप अपने को उस समय याद दिलाओ इसमें कुछ बेनिफिट है।
1: सही बात,
0: अगर बाहर बेनिफिट नहीं भी दिख रहा ना तो अंदर कोई बेनिफिट होगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आप भगवान के समीप आएंगे, आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी, यू विल ग्रो एज अ पर्सन। इसलिए किसी भी सीन को देखकर जो वो कह रहे हैं दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, दुनिया एक्यूरेट है, और आप हर सीन से एक्सेप्ट करें, उसमें बेनिफिट समाया है, उससे सीख करके आगे बढ़े, तो आपको बहुत ब्यूटीफुल दुनिया लगेगी।
1: ब्यूटीफुल।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: एक सवाल आया सिस्टर, लिखते हैं कि हेलो विशाल एंड सिस्टर श्रेया, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो तो मैं उसके गुस्से में रहती हूँ या रिवेंज मोड में रहती हूँ, और इसके कारण कभी कभी मैं किसी इनोसेंट पर्सन को हर्ट कर देती हूँ, नॉट इंटेंशनली, कोलैटरल डैमेज हो जाता है, फिर मुझे बहुत बुरा लगता है और फिर मुझे फील होता है कि मैं क्यों ही रिवेंज मोड में थी, इसका कोई पॉइंट ही नहीं था, कैसे इस चीज को ठीक करूं?
3: जो हम होते हैं वही तो हम देंगे ना। अगर आप दुखी हैं तो आप दुखी देंगे। हर्ट पीपल जो हम कई बार बात करते हैं, तो जब भी हमारे साथ जीवन में बुरा होता है तो उस बुरे से सीखने की कोशिश करनी चाहिए।
2: सही बात है।
3: कुछ भी हमारे साथ हुआ, जब हम उससे सीख लेते हैं तो वो सुखदाई बन जाती है। वो कितनी भी खराब सीन होती है, वो हमें कोई ना कोई पाठ पढ़ा करके चली जाती है, पर हम सीखते नहीं है, हम उसके दर्द में चले जाते हैं, उस विशेष साइकिल में चले जाते हैं। अब आप दर्द में है, एक मदर भी है, फिर वो अपने बच्चे को कुछ कह देंगे या उसके ऊपर हाथ उठ जाएगा, फिर गिल्ट होगा और फिर ये संस्कार बढ़ने लग जाता है। इसीलिए लोगों के संपर्क में तभी आए जब आपका मन ठीक है।
2: हाँ।
3: अगर आपका मन ठीक नहीं है तो थोड़ा सा समय निकाल करके अपने साथ बैठे। जैसे जब कोई ठीक नहीं होता तो उसके साथ बैठते हैं ना, उसको कहते हैं क्या हुआ, क्या बात है, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसको जाने दो, लेट गो, बातों को पकड़ो नहीं, बोल दिया, कौन सी बड़ी बात है।
2: तो अपने साथ भी यही करना है।
3: करना ही है अपने को, तो ठीक करना ही पड़ेगा ना। अपने को ठीक करके फिर आप किसी के संपर्क में आए, नहीं तो भूले हो जाते हैं, और जो आपने कहा कोलैटरल डैमेज, फिर वो रिश्ता खराब हो जाता है।
2: एक एम्ब्रोस बियर्स हैं, बहुत अच्छे ऑथर हैं, बहुत एक आध उन्होंने बहुत कमाल की कहानियां भी लिखी हैं। उनकी बहुत अच्छी कोट है जो मुझे पसंद है, वो कहते हैं कि स्पीक व्हेन यू आर एंग्री एंड यू विल मेक द बेस्ट स्पीच एवर दैट यू विल रिग्रेट ऑल योर लाइफ। बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं।
3: जब भी गुस्सा आता है ना, थोड़ा समय के लिए किनारा करना चाहिए।
2: बिल्कुल।
3: अगर हो सके तो उस दिन नहीं बोलना चाहिए, मतलब ये बात तक अगर सब समझे आ गया आपको। एक होता है करना ही नहीं है, पर अब आपको आ गया मतलब आपके मन में बहुत नेगेटिव चल रहा है। अगर आपने बोला तो आप हर्ट ही करेंगे, आपका वाइब्रेशन किसी को हर्ट करेगा, उस बोल के अंदर सॉफ्टनेस और जेंटलनेस नहीं होती।
2: सही बात।
3: आप किसी को काम भी कहेंगे ना करने के लिए, तो उसके अंदर भी रोब होगा, अथॉरिटी होगी, करवाहट होगी। तो अच्छा है एक दिन थोड़ा सा अगर आप साइलेंट रहेंगे, आप ठंडे हो जाए, फिर जो बात कहनी है कहें, तो कम से कम आप काफी डैमेज से बच जाएंगे।
2: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: gets hot.
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
5: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
6: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: एक सवाल बड़ा प्यारा आया है सिस्टर श्रेया। कहते हैं कि बच्चों को कितने साल के होने पर मेडिटेशन सिखाना ठीक होगा?
3: बच्चे एक ऐसे होते हैं कि गर्भ से उनके ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है।
2: हाँ, अभी मेडिटेशन करते हैं। सुनी है।
3: अभिमन्यु की कहानी है कि वो चक्रव्यूह का ज्ञान उसमें कैसे घुसना, उसने गर्भ में ही ले लिया। मतलब वो कहानी ये बताती है कि वैसे भी कई लोग बहुत ध्यान देते हैं प्रेगनेंसी के समय, उतने समय पर वो चूज करते हैं। ऐसा नहीं है कोई मजबूरी है, वो चूज करेंगे अच्छी किताबें पढ़ना, सत्संग करना, भागवत पढ़ना, बहुत कुछ चूज करते हैं कि उस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है सोल के ऊपर। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, लेकिन वो तो इन्फ्लुएंस हो गया। उसके बाद आजकल आप देखेंगे कई बार छोटे छोटे बच्चे होंगे घर में, पेरेंट्स योगा कर रहे हैं, फिजिकल योगा वो भी साथ में बैठकर कर रहे होते हैं, पेरेंट्स वॉक कर रहे हैं, बच्चे भी करना शुरू कर देते हैं। सो जितने यंग है उतना अच्छा है। बैठना तो शुरू करें, भगवान को याद करना तो शुरू करें। शायद उनको विधि समझ में नहीं आएंगे,
2: पर
3: उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी।
2: सही बात है।
3: फिर जितना जितना उनको 8 साल के होते हैं तो विधि भी समझ में आ जाएंगे। मैं समझती हूँ शायद 8 ईयर्स ओल्ड होंगे तो उनको विधि भी समझ में आएंगे, और इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। पर उनको स्पिरिचुअल स्थान पर जाने की आदत होनी चाहिए, घर में अच्छी अच्छी बातें सुनने की आदत होनी चाहिए। फॉर्मेटिव ईयर्स में उनकी बुद्धि डेवलप हो रही होती है तो संस्कार बहुत ईजी बन जाते हैं।
2: क्या बात है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
4: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
1: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
7: The mortgage industry has changed over the years, but our honest advice aaj bhi wahi hai.
8: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
7: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
8: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर श्राजीत सेनगुप्ता हैं, आसनसोल से लिखते हैं कि कुछ टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पर अब मैं ठीक हूँ। प्रॉब्लम ये है कि कुछ ही लोग मेरे से बात करते हैं, बाकी लोग मेरे साथ घुलते मिलते नहीं हैं क्योंकि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो लोग मुझ पे भरोसा करें। प्लीज एडवाइस करें कि मैं क्या करूँ।
3: हम बहुत ज्यादा ये जो सोचते हैं ना, ये ऐसा करे,
2: वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता।
3: वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हमारा जीवन का बहुत समय इसमें वेस्ट हो रहा है कि दूसरों को हमारे साथ कैसे होना चाहिए। दूसरे हमारे साथ वैसे ही होते हैं जैसे हम होते हैं टू सम एक्सटेंट, और जैसे उनके संस्कार होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि वो मेरे पर भरोसा करें, आप कर्म ऐसे करें कि वो भरोसा करना शुरू कर दें।
2: और जो लोग आपसे इस वक्त बात कर रहे हैं उनके बारे में सोचें, क्योंकि वो आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े हुए हैं। तो बजाय इनके जो नहीं है उनके बारे में सोच के आप इनसे मैत्रिता का भाव बढ़ाएं, और शायद इसके इन्हीं के कारण आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी।
3: भरोसा अपने कर्मों से जीतना होता है। बैठे हैं हम और कहने आप मेरे पर भरोसा करो, आप मेरे पर भरोसा करो, ये चीजें बोलने की नहीं होती। आप मुझे ट्रस्ट करो, आप मेरे पर फेथ रखो, आप देखिए ये चीजें डेवलप हो जाती है।
2: सही बात।
3: जैसा हमारा कर्म है, व्यवहार है, सोच है, हमें कहना थोड़ी ना पड़ता। सामने वाला कहते हैं इनको तो मैं 100% ट्रस्ट कर सकता हूँ, ऊपर तो मैं पूरा भरोसा कर सकता हूँ, इन्हें तो मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है, इनके ऊपर तो मैं सारा छोड़ सकता हूँ। तो ये क्या है, आपके कर्मों से आपने सामने वाले का फेथ, ट्रस्ट और भरोसा
2: जीत लिया।
3: तो आप ये कहने की जगह कि वो मेरे पर भरोसा करें, आप अपने पर मेहनत करना शुरू करें, धीरे धीरे सब आप पर भरोसा करेंगे।
2: शायद वो श्रजित ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ इस वक्त, फेयर वेदर फ्रेंड्स है वो सारे छोड़ के मुझे चले गए।
3: पर ये ओके है ना। तो क्या हो गया, कभी कभी ऐसा होता भी है कि अगर हम थोड़े समय के लिए अनएम्प्लॉयड है या किसी डिफिकल्ट समय से गुजर रहे हैं तो कई बार लोग साथ छोड़ भी देते हैं। इट इज ओके, मैं कहती हूँ उनके बारे में सोचने की जगह।
2: सही बात,
3: ये लाइफ में हो जाता है कई बार। तो हम ये देखें कि हमें क्या करना है, तो फिर जो हमारे अपने होंगे वो लौट कर आ जाएंगे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: खुशबूएं

0: Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते
5: हैं।
1: हजारों लोग एक तिरंगा एक दिल, और इस फीलिंग का नाम है इंडिया डे परेड 2026।
0: संडे ऑगस्ट 9th 1 PM ऑनवर्ड्स फ्रॉम इसलिन टू on Oak Tree Road, featuring Lakshiraj Singh Ji Maharaj, Richa Anirudh, Sanya Malhotra and more. Join the cultural fest and mela behind Umya Dham Temple.
6: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
7: Type C cable ke saath phone to charge kar loge. Khud ko kaise charge karoge? Mirchi Recharge Mornings, subah 6 se 8, only on Mirchi. It's hot.

0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए

0: अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
1: विपिन शर्मा लखनऊ से लिखते हैं, कुछ लोगों के बीच रिश्तों का नेचर जो होता है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होता है? हम अक्सर उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो हमसे बिल्कुल अलग होते हैं, और फिर धीरे धीरे एक पार्टनर या मेंबर को ज्यादा एडजस्ट और टॉलरेट करना पड़ता है। कभी तो एक्सप्लॉयटेशन तक हो जाता है। चाहे शादी हो, माँ बाप, सिबलिंग्स या बॉस, एक ही छत के नीचे रहकर ये चीज कॉमन है। क्या ये सब हमारे कर्मों से जुड़े होते हैं या कुछ और रीजन है?
2: कर्मों से तो जुड़ा होता ही है कि जिन जहाँ हमारा कर्मों का हिसाब किताब है वहाँ हम अट्रैक्ट होते ही हैं, ये तो होता ही है। लेकिन जो दूसरी बात है कि हमें ऑपोजिट क्यों अट्रैक्ट होता है, जिस चीज की कमी हमारे अंदर होती है
1: हम उसी की तरफ भागते हैं,
2: वो गुण हमें अट्रैक्ट करता है, वो चीज हमें अट्रैक्ट करती है। सब जो चीज मुझे अच्छी लगती है पर मेरे अंदर है नहीं, बट व्हेन आई सी इट इन समबडी एल्स मुझे वो क्वालिटी अट्रैक्ट करती है।
1: बिल्कुल,
2: तो हम क्वालिटी की तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं और हमें लगता है हम एक दूसरे को कंप्लीट कर देंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता, हम एक दूसरे को कंप्लीट नहीं कर सकते।
1: सही बात।
2: हम एक दोनों को कंप्लीट बनना है।
1: क्या बात,
2: एक एक
1: इंडिविजुअली हमें कंप्लीट बनना है।
2: मतलब मुझे लगता है इसकी क्वालिटी मेरी क्वालिटी हम कंप्लीट कर देंगे, नहीं, उसकी क्वालिटी मुझे इंस्पायर कर सकती है। पर वो मुझे क्रिएट तो अपने अंदर ही करनी
1: पड़ेगी।
2: लेकिन होता क्या है कि हम वो नहीं करते हैं, फिर थोड़े समय के बाद वो जो अट्रैक्शन है फिर वो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट में भी बदल जाता है।
3: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पर कम्यूट थोड़ा सा छोटा लगता है, कॉफी थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग लगती है और होम सिकनेस बिल्कुल नहीं लगती है। अब वेदर यू आर ड्राइविंग टू योर वर्क या फिर घर पर बैठकर तुम अपने ऑफिस के काम कर रहे हो, या फिर अभी तक ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करना शुरू नहीं किया है, या फिर अभी उठे ही नहीं हो, जो कुछ भी कर रहे हो अगले कुछ घंटों तक मिलेगा तुमको यहाँ पर मस्त मिर्चीदार बैंगर म्यूजिक, फन स्टोरीज, थोड़ा सा गॉसिप, अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स, एंड ऑफ कोर्स मैं बोले तो प्रिसिला की कंपनी। तो चलो वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा लो, स्माइल को थोड़ा सा चढ़ा लो और अब शो शुरू करते हैं जिसका नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Conditions apply.
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
14: मिर्ची फ्रेश माल।
15: लव, लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और टाइम हो चुका है क्विक टाइम ट्रैवल का, बिकॉज ऑन दिस डे सालों पहले क्या हुआ था ये पता करना भी तो जरूरी है। सबसे पहले चलते हैं 1492 में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से 3 ships लेकर निकले थे, सांता मरिया, पिंटा एंड निनिया। वैसे तो वो एशिया ढूंढने निकले थे लेकिन कैरेबियन पहुंच गए, मतलब ये हिस्ट्री का पहला गूगल मैप्स पे गलत टर्न ले लिया वाला मोमेंट रहा होगा। 1914 में जर्मनी ने फ्रांस के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया एंड World War I ऑफिशियली शुरू हो गया। फास्ट फॉरवर्ड टू 1949, बास्केटबॉल लवर्स, दिस वन्स फॉर यू, BAA और NBL मर्ज हुए और जन्म हुआ NBA का। 1958 में न्यूक्लियर सबमरीन USS Nautilus ने हिस्ट्री क्रिएट की, पहली बार नॉर्थ पोल के नीचे अंडर वाटर ट्रैवल कंप्लीट करके। और 1960 में निजायर बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रांस। तो देखा, एक ही दिन में कितनी अलग अलग कहानियां हुई थी। अगर तुम्हें भी कुछ ऐसा पता है तो मुझे बताओ। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। और अभी के लिए चिपक के बैठो, मिर्ची दर बैंगर्स कमिंग अप राइट योर वे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
7: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
12: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
13: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
14: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
13: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
15: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
13: Moral of the story? नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: and Peter Parker, yani Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से Tom Holland के shoulders पर rest करती है. क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो theatre से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज के पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओह, आल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रिकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज.
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
5: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
6: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
9: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा.
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और चलो देखते हैं कि आज का मौसम क्या मूड बना रहा है। अभी फिलहाल टेम्परेचर है 78 डिग्री फारेनहाइट और स्काई जो है वो मोस्टली क्लाउडी है, लेकिन हवा जो है मस्त चल रही है, इसीलिए एक्चुअली फील हो रहा है 75 डिग्री फारेनहाइट के आसपास। मतलब आज एसी फ्री में ऑन है, तुम्हारा पावर बिल नहीं आने वाला है। आज का हाई जाएगा 82 डिग्री फारेनहाइट तक और लो रहेगा 71 डिग्री फारेनहाइट तक, एंड फील होगा 69 से लेकर 80 डिग्री फारेनहाइट के बीच में। तो कभी कभी फिल्टर लगाकर आता है जस्ट लाइक एनी वन ऑफ अस। और हाँ, अराउंड 2:30 बजे के आसपास यानी 2:30 PM पर बारिश के चांसेस स्ट्रॉन्ग है। अगले 24 आवर्स में लगभग 7 मिलीमीटर की बरसात एक्सपेक्टेड है। लास्ट 24 आवर्स में 3 मिलीमीटर की बरसात ऑलरेडी हो चुकी है। तो आज क्लाउड्स ने ओवरटाइम करने का अप्रूवल दे दिया है, तो अपना अम्ब्रेला साथ में कैरी करना और साथ में कैरी करना अपना SPF 50+++ एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, यानी कि ढेर सारा पानी पीना है, एंड ऑफकोर्स कैरी करो साथ में मिर्ची का एटीट्यूड। मिर्चीदार बनाएंगे तुम्हारे दिन को और ज्यादा। अभी आगे बढ़ते हैं मिर्चीदार गानों की तरफ। कनेक्ट करो मुझसे, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings और अब time है. सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स का ग्रैंड फिनाले ग्लासगो में हो चुका है और स्टेज पर इंडिया का फुल ऑन कल्चरल स्वैग देखने को मिला है. एक्ट्रेस मनुषी चिल्लर ने वंदे मातरम पर परफॉर्मेंस दी. सिंगर शंकर महादेवन और उनके बेटों ने भी ऑडियंस को म्यूजिकल ट्रीट दिया. और सबसे खास बात यह है कि ऑफिशियल बैटन अब अहमदाबाद के पास है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की होस्टिंग इंडिया करने वाला है. वैसे मेडल टैली में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा, इंग्लैंड सेकेंड पर, कनाडा थर्ड पर और इंडिया ने 13 गोल्ड के साथ 39 मेडल्स जीतकर फोर्थ प्लेस पर फिनिश किया है. नंबर टू पर कनाडा के कैलगरी में इंडियन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं. उनका कहना है कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में एडमिशन इस अंडरस्टैंडिंग के साथ लिया था कि उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट यानी कि PGWP मिलेगा. अब परमिट एलिजिबिलिटी को लेकर कंफ्यूजन और रिजेक्शन के बाद वो अथॉरिटी से क्लैरिटी और रेजोल्यूशन की डिमांड कर रहे हैं. सिचुएशन डिवेलपिंग है और सबकी नजर अपडेट्स पर बनी हुई है. एंड फाइनली रिपोर्ट्स के मुताबिक फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड होर्हिना रोड्रिगेज इस सैटरडे मदीरा में शादी के बंधन में बंध सकते हैं. एक डिकेड पुरानी लव स्टोरी और अब फाइनली शादी की हेडलाइंस. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. स्टे कनेक्टेड विद मी इंस्टाग्राम और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
4: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
5: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
6: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
9: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
11: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
12: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
13: Listener MA, back to back gana sunega.
14: Back to back gana sunega.
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
15: Mirchi. Fresh Mal.
16: Imran Hashmi ke songs aur playlist hits. Dono ka rishta purana hai. Unki agli musical offering hai Ye Awarapan.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और आज दिल गार्डन गार्डन कर देने वाली स्पोर्ट्स अपडेट लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। टीम इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में टोटल 39 मेडल्स जीतकर एक जबरदस्त कैंपेन कंप्लीट किया है, और हमारे T20I कैप्टन श्रेयस अय्यर ने पूरी इंडियन कंटिंजेंट को सलूट करते हुए कहा है कि दिस इज इंडियन स्पोर्ट्स एट इट्स फाइनेस्ट। उन्होंने स्पेशली हमारे बॉक्सर्स की तारीफ की है जिन्होंने ग्लासगांव में गोल्ड जीत कर तिरंगे का मान और भी ऊंचा कर दिया है। सच बोलो तो यार, तुम फॉरेन कंट्री के किसी भी कोने में हो या फिर ऑफिस पार्किंग लॉट से चाय या कॉफी पीते हुए मुझे सुन रहे हो, जब इंडिया जीतता है ना तो एक सेकेंड के लिए सबको लगता है यार ये मेडल थोड़ा सा मेरा भी है, है ना? और अब सेलिब्रेशन की बात निकली ही है तो स्पार्कलिंग अपडेट भी सुन लो। तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स अब है 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, और तुम्हारे पास अगर 18 कैरेट्स या उससे ऊपर का पुराना गोल्ड रखा है तो उसे लेकर आओ, एक्सचेंज कराओ 0% डिडक्शन पर, एंड ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। बस ये याद रखना कि मेडल जीतना जितना मुश्किल है उतना मुश्किल नहीं है अच्छा डायमंड ढूंढना, क्योंकि वो तनिष्क पर अवेलेबल है। अभी फिलहाल अवेलेबल है तुम्हारे लिए मिर्चीदार बैंगर्स कमिंग अप राइट योर वे ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
4: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islin।
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Conditions apply.

0: ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਦਾ ਲੈ ਲਾ
1: ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: आज अगर तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो सबसे पहले काम करो, एज को काउंट मत करो, ब्लेसिंग्स को काउंट करो, और केक का साइज जो भी है दिल का साइज बड़ा होना चाहिए। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स की तरफ से। तुम्हें आज हैप्पी वाला बर्थडे है, सेलिब्रेट करने वाले तुम तो हो ही, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ तुम्हारी तरह के रॉक स्टार्स और भी हैं। उनके नाम क्या है, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले वी गॉट मार्था स्टूअर्ट, एंड देन वी गॉट लेजेंडरी एक्टर मार्टिन शीन, साथ में मेटालिका के पावर हाउस फ्रंट मैन जेम्स हेटफील्ड, हिप हॉप आइकॉन डीजे स्पिंडरेला और लॉस्ट एंड एंटमैन फेम एक्ट्रेस एवेंजेलिन लिली। मतलब अगर आज तुम्हारा भी हैप्पी बर्थडे है ना, तो गेस्ट लिस्ट ऑलरेडी काफी इम्प्रेसिव हो गई है, बस केक कटने का इंतजार है। पिक्चर्स तो मुझे भी भेज सकते हो मेरे हैंडल पर, जो कि है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। और अब बर्थडे गिफ्ट की बात चल रही है, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, आरके जूल्स लेकर आए हैं तुम्हारे लिए स्पार्कलिंग सरप्राइज। शॉप करो उनके एक्सक्विजिट कलेक्शन में जाकर स्टनिंग ज्वेलरी, एंड यू कुड गेट अ फ्री $250 का गिफ्ट कार्ड। RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। और अगर तुम अपने शाउट आउट भेजना चाहते हो तो मुझे DM करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
0: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
0: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
7: कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं।
0: हजारों लोग, एक तिरंगा, एक दिल, और इस फीलिंग का नाम है इंडिया डे परेड 2026।
8: संडे अगस्त 9th 1 PM onwards, from Iselin to Edison on Oak Tree Road, featuring Lakshyaraj Singh Ji Maharaj, Richa Anirudh, Sanya Malhotra and more. Join the cultural fest and mela behind Umya Dham Temple.
9: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
10: Tera kya hoga Kalia?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे देयर, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब सुनने वाले हो गोल्ड का रेट अपडेट।
2: राजोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड रीडिंग एट $4,050, $4,050 पर ट्रे हाउस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, natural with lifetime warranties and certification, and GI certified natural diamond, any shapes, any color, any size। Raj Jewels के साथ gold and diamond में invest करें, और हमारी special financing option जिसके अंदर 0% interest पे, 0 down payment में आज एक भी पैसा नहीं देना है। Approve होने पे Raj Jewels के साथ gold का price lock करें, 22 carat gold jewelry घर लेके जाएं और 9 installments में पैसे दें बिना किसी interest, बिना किसी hidden fee के। आइए RajJewels.com के साथ gold में invest करें। Thank you, happy morning to all।
1: And there you have it, gold का latest rate update exclusively on Mirchi Mornings with me Priscilla। Connect करो मुझे Insta और X पर, मेरा handle है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और टाइम हो गया है मिर्ची आवो का 3 का, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से व्हाट्सएप कुछ यूजर्स को अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रोफाइल में ऐड करने का प्रॉम्प्ट दिखा रहा है इन इंडिया। मैसेज में लिखा है कि इंडिया के अपकमिंग लॉज के चलते एज इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है। अभी तक व्हाट्सएप ने ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दिया है कि ये फीचर सबके लिए रोल आउट होगा या एग्जैक्टली कैसे काम करेगा। नंबर 2 पर, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने इंडिया में ओपनिंग वीकेंड पर जबरदस्त कलेक्शन किया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेक ओपनिंग वीकेंड बिजनेस किया है एंड टॉम हॉलैंड का वेब स्लिंगर फिर से बॉक्स ऑफिस पर छा गया है। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
3: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
4: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
5: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
8: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
9: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
8: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
9: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
12: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzilin, New Jersey. Conditions apply.
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
14: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and welcome to राशि जोन का पहला पार्ट.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: It is Animesh Rashi, दिमाग में जो क्रेजी आइडियाज आ रहे हैं उन्हें इग्नोर मत करो. उन्हीं में नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी छुपी हो सकती है. लकी कलर फॉर यू इज क्रिमजन. लकी नंबर इज 17. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज ऑनेस्टी ही तुम्हारा सुपर पावर है. सच बोलना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है लेकिन बाद में आई टोल्ड यू सो बोलने का मौका भी मिलेगा. लकी कलर फॉर यू इज फॉरेस्ट ग्रीन. लकी नंबर इज 26. जेमिनी यानी मिथुन राशि, अगर कोई दोस्त एडवाइस दे तो पहले सुन लो ना यार, आई रोल बाद में कर लेना, हो सकता है वो बात काम की हो. लकी कलर फॉर यू इज स्काई ब्लू. लकी नंबर इज 5. कैंसर यानी कर्क राशि, कैंसर यानी कर्क राशि, मनी मैटर्स को पोस्टपोन मत करो. बिल्स हैरी पॉटर की तरह डिसअपीयर नहीं होते बेटा. आज एक्शन लो और तुम्हें कल इसका रिएक्शन मिलेगा. लकी कलर फॉर यू इज सिल्वर. लकी नंबर इज 32. लियो यानी कि सिंह राशि, सुपर हीरो बनना अच्छा है लेकिन आज हेल्प मांगना और भी अच्छा होगा. टीम वर्क का असली पावर यही मूव है. लकी कलर फॉर यू इज गोल्ड. लकी नंबर इज 9. वर्गो यानी कन्या राशि, आज कुछ ऐसा होगा जो लॉजिक को चैलेंज करेगा. हर चीज का एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं होता है, बस ऑब्जर्व करो. लकी कलर इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 14. आगे की राशियां लेकर आती हूँ थोड़ी सी देर में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. तब तक के लिए तुम एंजॉय करो मिर्ची दार बैंगर्स एंड गो एंड चेक आउट माई सोशल्स. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
5: इस फ्रेंडशिप डे प्लान सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप तक मत रखो.
6: गेट रेडी फॉर दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0. ज्योत्सना शर्मा एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टिवेट टैलेंट्स ब्रिंग यू एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग विद लाइव बैंड एंड सिंगर्स एंड ओपन डांस फ्लो एंड अ प्रीमियम 3-course डिनर, ऑल जस्ट फॉर $65. फ्राइडे ऑगस्ट 7th, 7 PM एट रॉयल अल्बर्ट्स पैलेस फोर्ट्स. बुक नाउ, कॉल ज्योत्सना एट 7329972409.
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
7: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
10: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
11: अब मिर्ची खा.
13: Radio Mirchi, it's hot.

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और चलो कंप्लीट करते हैं हमारा राशि जोन। पार्ट टू इज आउट हियर।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि, इस वीक पीस मोड में होने वाले हो, तब तक किसी भी आर्ग्यूमेंट को आईपीएल ऑक्शन मत बना लेना। लकी कलर स्पीच, लकी नंबर इज 21। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, जो फील कर रहे हो वो फेस पर लिखा हुआ है, तो पोलाइटली ऑनेस्ट रहो और सॉल्यूशंस भी दो। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, सबको एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी रिजल्ट्स ही बेस्ट रिप्लाई होते हैं। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 30। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आज थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहना स्मार्ट रहेगा, हर इन्फॉर्मेशन शेयर करना जरूरी नहीं होता है। ऑफिस गॉसिप एफएम मत बनो। लकी कलर इज चारकोल ग्रे, लकी नंबर इज 11। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, एक दोस्त आज तुम्हें प्लेजेंटली सरप्राइज कर सकता है, ओपन माइंड रखो और हार्ट को भी ओपन रखो। लाइफ के बेस्ट प्लॉट ट्विस्ट स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं। लकी कलर इज अक्वा, लकी नंबर इज 24। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, टू डू लिस्ट का पहला काम सुबह सुबह निपटा लो, मोमेंटम मिल गया है तो आज तुम अनस्टॉपेबल हो। लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 6। एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट टू। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मुझे फॉलो करना मत भूलना। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 4। Stay tuned and stay hot.

0: Saad Jeeturaj. Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi. My name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man Brand New Day aa gayi hai. And for God's sake, please, theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you. Kyunki is film mein kahi chhoti-chhoti aisi cheeze hain. Especially jab characters aapas mein baat karte hain, to unki whispers, unka pyaar, unka ghussa, wo theater mein jo maza deta hai, wo kahi bhi nahi dega. And for God's sake, kisi se bhi story mat suno. Don't take any spoilers. Film mein kahi aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you. ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशा एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeeturaj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeeturaj जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं Jeeturaj ने. वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची Jeeturaj. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय Jeeturaj विद फोर मिर्चीज.
0: साद Jeeturaj. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
8: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स. गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस. विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड इजलिन न्यू जर्सी. कंडीशंस अप्लाई.
9: नो
10: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप 1213 न्यू जर्सी 27 सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप 700 हैरिस एव मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर यू आर इन गुड हैंड्स.
11: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
12: Listener mein back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: बस यार आज का मिर्ची मॉर्निंग्स चाय की तरह, कॉफी की तरह, ब्रेकफास्ट की तरह खत्म हो गया है। बातों को यहीं पर फुल स्टॉप देने के पहले एक लास्ट बात बताकर जाती हूँ। हमारे इंडिया के ओपनर अभिषेक शर्मा ने पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट वन डे टूर्नामेंट में बोलिंग अटैक को लिटरली साइड सीइंग पर भेज दिया था। सिर्फ 91 बॉल्स में 233 रन्स, उसमें से 25 सिक्सेस एंड 15 वर फोर्स। मतलब बॉलर को भी बस एक ही चीज क्लियरली दिख रही होगी, बॉल बाउंड्री के बाहर जाती हुई। और सिर्फ बैटिंग ही नहीं, भाई ने दो विकेट्स भी लिए हैं। टोटल ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है ये तो। अमृतसर ने 533 रन्स बना दिए और मैच 220 रन्स से जीत लिया। अब इसको कहते हैं मंडे का मोटिवेशन, वो भी क्रिकेट एडिशन। अब चलो ये मोटिवेशन तो तुम रख लो, मेरी तरफ से एक चैलेंज भी रखो। ऑफिस में आज अगर इतनी ही एनर्जी से काम कर लिया, चलो मेरी तरफ से एक चैलेंज लो, ऑफिस में अगर इतनी ही एनर्जी से काम कर लिया जितनी एनर्जी से अभिषेक ने बैटिंग में कर दिखाया है, तो शाम की चाय एक्स्ट्रा टेस्टी लगने वाली है। तो आज ट्राई जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, मेरे साथ मॉर्निंग स्पेंड करने के लिए। अगर शो का कोई मोमेंट तुम्हारे फेस पर स्माइल लेकर आया है तो मुझे पक्का से फॉलो करना। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मम्मा ने इतनी टिप्पणियां दी है ना मुझे जिंदगी में, उन बातों को मैंने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन आज मैं ऑटो वाले भैया की ये जो बात थी ना उसको नजरअंदाज नहीं कर पाई।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sarah, की 90s की याद का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और ये ऑटो वाले भैया जो होते हैं ना, इन लोगों के पास ना बड़े पिटारे होते हैं कहानियों के। और बातों ही बातों में ना एक ऑटो वाले भैया से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने न जाने डर के बारे में बात करनी शुरू कर दी। आई मीन आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों हुआ कि वो डर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डर के बारे में बात करते करते ये बात कही कि मैडम जब छोटे थे ना तो इतना डर नहीं लगा करते था, लेकिन बड़े होते होते ना डर जो है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। And I was like, हाँ यार, ये कितनी सही बात कह रहे हैं। एक्चुअली जब हम छोटे थे तो हमें किसी चीज का डर नहीं लगता था, तब हमें लगता था कि हम दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे, तब हमें ना अनजानों से डर लगता था, ना इस बात से डर लगता था कि कोई हमें किस नजर से देख रहा है, ना इस बात से डर लगता था कि पॉकेट मनी खत्म हो गई है, ना ही हमें ऊंचाई से डर लगता था, ना ही हमें गहराई से डर लगता था। हाँ, डर लगता था तो सिर्फ अंधेरों से, मम्मा की घूरती हुई निगाहों से, टीचर की डांट से और मेरी खुद की आर्ट से। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना, ये डर जो है ये कितना बढ़ता गया ना, अब हम न जाने कितनी सारी चीजों को लेकर सिर्फ और सिर्फ डरते रहते कि नहीं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना वरना वो हो जाएगा, वो नहीं करना वरना ये हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, महीने की शुरुआत होती है और हमें EMI से डर लगने लग जाता है कि ओह नो, अभी तो सैलरी आई है और अब चली जाएगी, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा इस महीने हमारे पास। एडवेंचर करने से भी डर लगता है मालिक, अब ऐसा लगता है कि यार गए और गिर गए तो क्या होगा, पहले ये सब बातें कौन सोचा करता था यार, हम तो सिर्फ कर जाया करते थे, सोच कर कुछ नहीं किया करते थे। मैंने कहा ना जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना वैसे वैसे डर भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक मजेदारी वाली बात बताऊं, दो ही उम्र के ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर डर हमें कम लगता है या ना लगता है, या तो बचपन या फिर बुढ़ापा। क्योंकि जो मैंने अपने घर के बड़ों से बात करी है ना, वो भी अक्सर यही कहते हैं, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी हुई है। तो ये जो डरने वाला माहौल बना हुआ है ना हमारी लाइफ में, वो अभी अभी है यार, आगे जाके नहीं होगा, तो ज्यादा फिक्र नहीं करने का। और अभी के लिए मेरे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ, आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Inefficient,
3: very complex,
4: clumsy, or
5: confusion ही confusion.
2: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155 लॉग ऑन टू lionmtg.com
7: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Tera kya hoga, Kalia?
11: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
10: Ab, mirchi kha.
12: Radio Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मैं अक्सर आपसे दाल चावल फिल्मों के बारे में जिक्र करती हूँ, यानी कि वो फिल्में जो हम कितनी बार भी देख लें बोर नहीं होते हैं, और उनमें से एक आती है वेलकम
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और क्या फिल्म बनाई थी भाई, क्या फिल्म बनाई थी. इतनी बढ़िया और इतनी जबरदस्त कि हंसते हंसते पागल हो गए थे सब के सब, तब भी और आज भी पागल हो जाते हैं. ऐसी कॉमेडी, ऐसी टाइमिंग, ऐसी कास्ट, अब तो ऐसी फिल्में बनती नहीं है यार. तभी तो वेलकम की इतनी कदर है. लेकिन पता है क्या, अगर कदर को पैसों में तोला जाए ना, तो कटरीना कैफ की एक ड्रेस थी इस फिल्म में जो उन्होंने पहनी थी, एक सिल्वर कलर की ड्रेस थी. एंड ये जो उनकी सिल्वर कलर की ड्रेस थी, ये उनकी पर्सनल वार्डरोब में से निकली हुई ड्रेस थी. इसका वर्थ था 2,00,000 रुपए का, जो उनको कभी उनके किसी फ्रेंड ने, जो फैशन डिजाइनर है एमिलियो पुची, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन, प्रोबेबली एमिलियो पुची इज फैशन की दुनिया में सम बिग पुची, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन की ये ड्रेस का प्राइस वॉज सो हाई. हाउ स्वीट ऑफ कटरीना कि उन्होंने इस फिल्म में इस ड्रेस का इस्तेमाल करने का सोचा भी. मैं होती तो मैं इतनी महंगी ड्रेस कभी क्यों लेकर जाती यार सेट पे. एनीवेज, मुझे तो कोई फिल्म भी ऑफर नहीं कर रहा है. मगर जब अनिल कपूर को ये फिल्म ऑफर करी गई थी, तो इट वाज अनिल कपूर हिमसेल्फ जिसने अनीस बाजमी द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म उनको ये सजेस्ट किया था कि उनके कैरेक्टर का नाम मजनू भाई होना चाहिए. आई डोंट नो हाउ डिड ही थिंक ऑफ इट, बट क्या नाम रखा यार, जबरदस्त एकदम. एंड यू नो व्हाट, एक बड़ी इत्तेफाक की बात ये रही कि 1986 में अनिल कपूर ने सलमा आगा के साथ मिलकर एक पॉप एल्बम रिलीज किया था जिसमें उन्होंने गाया था यस, और उस एल्बम का नाम था वेलकम. किसने सोचा था कि इतने सालों बाद वो एक फिल्म करेंगे और उस फिल्म का नाम भी होगा वेलकम. लेकिन इस फिल्म का नाम वेलकम हमेशा नहीं था. एक्चुअली 2004 में सलमान खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वो फिरोज नादियाडवाला के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है दीवाने हुए पागल, एंड उसमें उनके ऑपोजिट कटरीना कैफ है. एंड वेल, दीवाने हुए पागल ओरिजिनल नाम था वेलकम का, जिसको लेटर ऑन टाइटल किया गया वेलकम. और इस फिल्म में सलमान खान काम करने वाले थे, लेकिन ही एग्जिटेड द फिल्म. फिर शाहिद कपूर आए, फिर इस फिल्म का नाम कर दिया गया था प्यार किए जा, और वो भी इस फिल्म से निकल गए. फाइनली अक्षय को इस फिल्म के लिए साइन किया गया और इस फिल्म का नाम रख दिया वेलकम. आई थिंक नाम में ही कोई कमी थी यार. दीवाने हुए पागल में वाकई में दीवाने हुए पागल और पिक्चर छोड़ गए. प्यार किए जा का जा पकड़ लिया और शाहिद कपूर निकल गए. जब वेलकम बोला तो कास्ट आई और फिर कभी गई नहीं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बड़ी फिल्मों की यही प्रॉब्लम होती है, जब किसी बड़ी फिल्म में बड़ी कास्ट होती है ना, तो आपस में इस बात के झगड़े होने लग जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ज्यादा किसको मिलनी चाहिए। ऐसा ही कुछ वेलकम के साथ भी हुआ।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ऐसा कहा जाता है कि अनिल कपूर और अक्षय कुमार, इन दोनों के बीच में बड़े इश्यूज चल रहे थे जब इस फिल्म के क्रेडिट्स की बात की जा रही थी। हाँ, मतलब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भाई किसको इस फिल्म के क्रेडिट्स में सबसे पहले फीचर करना चाहिए, किसका नाम सबसे पहले आना चाहिए, अनिल कपूर का आना चाहिए या अक्षय कुमार का आना चाहिए। एंड दोनों ही अपने अपने नाम के लिए वोट कर रहे थे कि मेरा आना चाहिए, मेरा आना चाहिए, कौन सीनियर है कौन नहीं है, ये सारी जो डिसएग्रीमेंट्स थी ये सब चल रही थी। बस क्या, उसी टाइम पर इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाजमी ने अपना दिमाग लगाया। ही स्टेप्ड इन एंड ही सेड, दोनों में से किसी का नहीं आएगा, बोलो पेंसिल, दोनों के नाम कैंसिल, क्रेडिट में सबसे पहला नाम आएगा फिरोज खान साहब का, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको पता है, जब फिरोज खान इस फिल्म के लिए शूट कर रहे थे, ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। ये वो फिल्म थी जिसको शूट करते करते ही वॉज ऑल्सो डीलिंग विद हिज कैंसर। दुनिया को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमें तो तब पता लगा जब अचानक से एक दिन खबर आई कि फिरोज खान साहब इज नो मोर अमंगस्ट अस। एंड वेलकम वाज हिज लास्ट फिल्म दैट ही डिड। इनफैक्ट जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस दिन भी फिरोज खान हैड टू बी रश्ड टू द हॉस्पिटल, लेकिन इतनी बीमारी और इतनी तकलीफ में भी उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना आर्ट नहीं छोड़ा। क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को ये बात पता होती है कि ये एक चीज ऐसी है, इस आर्ट की भूख ऐसी है, जो कितना भी बड़ा कोई मर्ज क्यों ना हो, वो कैंसर ही क्यों ना हो, उसके अंदर का इंसान जिंदा रखेगी। और इसी जिंदा दिली का नाम फिरोज खान था। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 12 p.m. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go!
4: Her Friday, Bollywood ke liye is a new start. Ek nahi kahani. Lekin her kahani nahi yaad ban ke nahi rehti. Aur shayad isliye, aaj hum ek ajeeb era mein jee rahe hain. Filmein bhi wapis aa rahi hain. कैरेक्टर्स भी वापस आ रहे हैं, सॉन्ग्स भी वापस आ रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को भी पता है यादें बनाना उन्हें दोबारा बेचने से कई ज्यादा मुश्किल होता है. अगस्त शायद इसी सवाल का जवाब लेकर आ रहा है. यू गॉट टॉक्सिक, यू गॉट आवारापन, यू गॉट बंटवारा 1947. तो क्या 2026 सिर्फ हिट्स देगा या फिर हमें कुछ ऐसी फिल्में और गाने भी देगा जिनके बारे में हम 10 साल बाद भी बात करेंगे. इसी होप के साथ वेलकम टू द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का डेफिनेटिव बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन. एंड आई एम सुरेन सुंदरम,
5: नंबर 20.

a banger by Jasmine Sandlers, और नंबर 20 फ्रॉम धुरंधर, और नंबर 19 पर डेब्यू कर रहा है आंखों से तूने ये क्या कह दिया, एक ऐसे गाने का रीमेक। इसके ओरिजिनल वर्जन को किसी मेकओवर की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अब मजेदार बात यह है कि ये जो फिल्म है भाई तेरा स्टार है, उसके अंदर हीरो राघव जुयाल डायरेक्टर से खुद पूछते हैं क्लासिक गाना रीमेक क्यों कर रहे हो, और जवाब मिलता है रिकॉल वैल्यू। बस अफसोस इतना सा है, रिकॉल तो सिर्फ ओरिजिनल का रह जाएगा, नया वर्जन सिर्फ उसकी डीजे मिक्स कॉपी बन के रह जाएगी। फिर भी काउंटडाउन पर उसकी जगह बन रही है। दिस इज आंखों से तूने क्या कह दिया फ्रॉम भाई तेरा स्टार है, स्टारिंग राघव जुयाल। इस हफ्ते गाना नंबर 19। नंबर 19।

0: you want to play, fall in line, little boy, because you can't run away. There's nowhere to hide. There's nowhere to go. I've shattered the ceiling. There's blood on the floor. A fight to the finish. Or a kiss goodbye. Get your last wish, baby, because you're going to die.
1: Have you noticed?
2: जब जज्बात बहुत बड़े हो जाते हैं तो लोग बोलना कम कर देते हैं, गाने चला देते हैं। पिछले कुछ दिनों में देश ने बहुत कुछ देखा, बहुत सारी आवाजें सुनी, बहुत सारे नारे सुने, लेकिन एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। हर जगह वही तीन गाने सबको सुनाई दे रहे थे, एक जो इस देश की पहचान बन गया है,

दूसरा जब हर मुश्किल घड़ी में इस देश को मोटिवेट करता है। और फिर ये तीसरा और आखिरी गाना जो अपने अंदर की आवाज को झंझोड़ता है। सोचिए ये तीनों गाने आज के नहीं है, दो दशक से ज्यादा पुराने हैं। फिर भी जब इस जेनरेशन को अपनी फीलिंग्स को आवाज देनी थी, इन्होंने कोई नया गाना नहीं ढूंढा, वापस इन्हीं गानों तक लौटाए। एक बार जो गाना आवाज बन गया, उस आवाज को दबाना मुश्किल होता है। हर जेनरेशन उन्हीं गानों को अपना लेती है जो उनके इमोशंस को उनसे बेहतर समझ ले। इस हफ्ते मेरा रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक एआर रहमान की वो कॉम्पोजिशन जिसने हर बार एक नई जेनरेशन के साथ फिर से जन्म लिया, फिर से उस पीढ़ी की आवाज बनी। टॉप 20 रीवाइंड।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
5: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेह पूर्ण आमंत्रण. शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिव जी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 7323578200. जय गुरुदेव.
6: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, the king of mortgage industry.
8: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
3: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
9: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं.
10: हजारों लोग, एक तिरंगा, एक दिल, और इस फीलिंग का नाम है इंडिया डे परेड 2026.
11: संडे अगस्त 9th 1 PM onwards फ्रॉम इसलिन टू एडिसन ऑन ओक ट्री रोड, फीचरिंग लक्ष्यराज सिंह जी महाराज, रिचा अनिरुद्ध, सानिया मल्होत्रा एंड मोर. जॉइन द कल्चरल फेस्ट एंड मेला बिहाइंड उमिया धाम टेम्पल.
0: Only on Mirchi. It's hot.
12: Number 10.

0: बस यही तो कमाल है हिंदी फिल्म म्यूजिक का। कुछ सेकंड पहले तक आरी आरी जैसे गानों के साथ खून तेजी से दौड़ रहा होता है, आपके अंदर इतना एड्रेनलिन भर जाता है कि लगता है कि दुनिया जीत लोगे, और अगले ही पल अगला ही गाना उसी दिल को धीरे से पकड़ लेता है, और आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। पिछले हफ्ते मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आवारापन का वो गाना जिसका इंतजार सिर्फ फिल्म के फैंस नहीं पूरा म्यूजिक सर्किट कर रहा था, इस हफ्ते वो काउंटडाउन पर जरूर डेब्यू करेगा। तो बस प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले आई नीड टू से दिस दैट आई लव अमाल मलिक, ही इज लाइक माय यंगर ब्रदर, और अमाल की कही हुई एक बात मेड मी फील सो सो प्राउड अबाउट हिम।
1: I'm the SRK of music and romance, who I believe another who soul travels just like me is Mithun. I think in our, like, mere senior hai, but he's the only one I feel, and I'm har jagah aisa bolta ho, and egoistically nahi ki I'm the SRK of music and romance, main hu, so I believe the best. But someone who always hum log mein ek, yani competition nahi rahega, but I think someone who touches my soul on that level is him. Wo utni purity se he also works. So we are the only two people who are trying to do in our generation purest work.
0: यार कितनी खूबसूरत बात है। हर कंपोजर का अपना एक सिग्नेचर होता है, अपनी एक मेलेडी होती है, अपना एक इमोशन होता है, और जब एक कंपोजर दूसरे कंपोजर की सोच को इतनी इज्जत दे तो समझ लीजिए म्यूजिक सिर्फ कॉम्पिटिशन नहीं कॉन्वर्सेशन बन गया है, और इस कॉन्वर्सेशन का नया चैप्टर आज ऑफिशियली शुरू होता है ऑन द चार्ट्स, डेब्यूइंग स्ट्रेट ऑन नंबर 9, रश्मि विराट के लव्स, अमाल मलिक की कॉम्पोजिशन और अरिजीत सिंह की आवाज, ये आवारापन। नंबर 9।

शरारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता क्या है? मधुबंती बागची और जैस्मिन सैंडलर्स की आवाज नहीं, उसका मुखड़ा भी नहीं। इस गाने की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रेंथ है, उसके वो पहले कुछ सेकंड्स जहां गाना बस शुरू होता है और आपका दिमाग तुरंत बोलता है, ओह यस, दिस इज शरारत।

Am I right or am I right? यार मुझे लगता है कि म्यूजिक की दुनिया चुपचाप बदल रही है। आज गाने का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा उसका हुक बन गया है, क्योंकि वही रील्स पर और शॉर्ट्स पर ट्रेंड करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, द कंपोजर्स गाने में सबसे ज्यादा प्यार उसकी शुरुआत पर खर्च करते थे। एक इंट्रो जो बिना एक भी लफ्ज बोले अपनी पहचान बना लेता था।

बस इतना ही, ना वोकल्स ना लिरिक्स। फिर भी अगर आप 2008 में थे तो आपको पता था हाथू है। शायद इसलिए कुछ इंट्रोस सिर्फ म्यूजिक नहीं होते, वो मेमोरी के फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं। एक बार सुन लो और सालों बाद भी इसे पहचानने में कभी गलती नहीं होगी। वैसे ही इस हफ्ते नंबर 4 पर जो गाना है उसकी पहचान भी उसका इंट्रो ही था, चुनरी चुनरी। लेकिन जिस गाने की हम इतनी बात कर चुके हैं, जिस गाने का मैं इतना जिक्र कर चुका हूं, दैट इज गोइंग टू बी माई पिक ऑफ द वीक। जन्नत की पूरी एल्बम में शायद सबसे अंडर रेटेड ट्रैक, लेकिन मेरे लिए सबसे प्यारा। वही इंट्रो जो दिल पर अब भी दस्तक दे रहा है, सन बाय माई ऑल टाइम फेवरेट सिंगर के प्रीतम दा की धुन। हाँ, तू है।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: इट्स 12:30 PM मिर्ची टाइम चेक RK Jewels गेट अमेजिंग डील्स ऑन एक्सक्विजिट कलेक्शन ऑन वाइड रेंज ऑफ फ्लॉलेस एंड स्टनिंग ज्वेलरी कलेक्शन RK Jewels बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
2: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
3: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
4: Number 3.

और दूसरी हिट फिल्म का सीक्वल आ चुका है वेलकम धमाल दे दे प्यार दे. देन यू आल्सो गॉट सम कल्ट क्लासिक्स लाइक बॉर्डर एंड गदर. एंड लगता है कि बॉलीवुड को एक ही चीज का नशा है एंड दैट इज फ्रेंचाइजेस. लेकिन इतने सारे सीक्वल्स के बीच एक नाम है जिसकी कमी हर साल और ज्यादा महसूस होती है और छुपती है. धूम जैसे फिल्म कहां थी, ये स्टाइल था, एटीट्यूड था. पहली धूम में जॉन अब्राहम ने बाइक्स को कूल नहीं बनाया, उन्हें एस्पिरेशनल बना दिया. सबको एक सुपर बाइक चाहिए थी. फिर आए ऋतिक रोशन और धूम 2 ने फ्रेंचाइज को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया. डूड ऋतिक नेवर लुक्ड एज सेक्सी एज ही डिड इन धूम 2. एंड उसके बाद 7 साल बाद सिर्फ खामोशी. यस, आमिर खान की धूम 3 आई जरूर, लेकिन वो दीवानगी वापस नहीं आई. और हाल फिलहाल आप सुन रहे होंगे कि इस सीरीज को रीबूट करने की प्लानिंग चल रही है. रणबीर कपूर का नाम डिस्कस हो रहा है, फिर ये पता लगता है दैट स्क्रिप्ट की वजह से रणबीर भी एग्जिट कर गए. सच कहूं मुझे नए विलन की बिल्कुल फिक्र नहीं है. मुझे सिर्फ इतना लगता है कि जिस फ्रेंचाइज ने हिंदी सिनेमा को इतना स्वैग और इतना कूल दिया, उसे सिर्फ कमबैक नहीं ब्लॉकबस्टर कमबैक मिलना चाहिए. सो YRF टेक योर टाइम, जितना वक्त लेना है आप ले लो, बस धूम को स्पाई यूनिवर्स वाले रास्ते ना ले जाना. तब तक YRF का दिया एक और सुपरस्टार जिसने शुरुआत की थी विद बैंड बाजा बारात, आज बॉक्स ऑफिस पर सबकी बैंड बजा रहा है. एक बार फिर माय मोस्ट फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ लास्ट ईयर, इट्स स्टिल नंबर 1. दिस इज गहरा हुआ स्टारिंग रणवीर धुरंधर सिंह. नंबर 1.

0: एक और हफ्ता और गहरा हुआ फिर से नंबर वन। सच कहूं लगता ही नहीं कि धुरंधर का मैजिक बिल्कुल फेड हुआ है। इस एपिसोड में वैसे मुझे बहुत मजा आया, मेमोरीज की बात की, नई ट्यून्स की बात की और उन कहानियों की भी जो सिर्फ फिल्मों में नहीं हम सबके अंदर रहती हैं। आई होप यू लाइक द एपिसोड एज वेल। अगली बार फिर मिलेंगे हियर ऑन द मिर्ची टॉक 20। अंटिल देन सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अच्छा, पहली मुलाकात कैसी होती है? ऐसी ही तो होती है, थोड़ी नर्वसनेस, थोड़ा एक्साइटमेंट।
1: पुरानी जीन्स
0: पे हाय, दिस इज मी श्रेया। पहली मुलाकात है तुम्हारी और मेरी, बट आई प्रॉमिस कि ये लंबी चलने वाली है, क्योंकि हम दोनों का एक कॉमन इंटरेस्ट है और वो है उस जमाने के गाने। तो उस जमाने के गानों के साथ उस जमाने की बातें भी मिलेंगी, लेकिन हाँ, इस जमाने की श्रेया के साथ। अच्छा, जब तुम पहली बार किसी से मिलते हो, पहली बार कोई इंटरव्यू देते हो, पहली बार कोई कंपटीशन क्रैक करते हो, या जिंदगी में पहली बार जब जो जो होता है ना, वो बहुत ही खास हो जाता है। तो अभी कुछ गाने सुन करके वापस आओ। आज मैं बताऊंगी जब पहली बार बड़े बड़े रेट्रो स्टार्स ने, उस जमाने के एक्टर्स ने कैमरा जब फेस किया तो उनके साथ क्या हुआ। जैसे कि जब अमित जी ने ये अभी नहीं, ये गानों के उस पार। So come right back only on Purani Jeans.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
10: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
9: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
11: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है।
9: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पर आप श्रेया के साथ, और ये आज मेरी और आपकी पहली मुलाकात है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स की पहली फिल्मों की बात की जाए जब दे फेस द कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको पता है इनको अपनी पहली मूवी के लिए सिर्फ 5,000 रुपए मिले थे। तो क्योंकि आज मेरी और आपकी पहली मुलाकात है, मैंने सोचा कि क्यों ना वो दिग्गज एक्टर्स के बारे में बात करें जिन्होंने जब पहली बार कैमरा फेस किया तो उनके साथ क्या क्या हुआ। पता है अमित जी को उनकी पहली फिल्म के लिए 5,000 रुपए मिले थे, और वो भी काफी नेगोशिएशन के बाद विद टीनू आनंद। अमिताभ बच्चन जी की पहली फिल्म थी सात हिंदुस्तानी, इसके लिए उन्हें पूरे 5,000 रुपए मिले और साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया, मूवी चाहे साल भर में बने या 5 साल में बने, और उस 5 साल के अंदर चाहे अमित जी जितने बड़े भी सुपरस्टार बन जाएं, पर सात हिंदुस्तानी के लिए उन्हें सिर्फ 5,000 रुपए मिलेंगे। अच्छा, अपने धर्मपाल जी की पहली कौन सी फिल्म थी? नहीं पता तो मैं बताऊंगी ना। वापस आओ गाने सुन करके। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स विद मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
4: I enjoy using inefficient and complex software, मामा।
5: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
6: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one. अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
9: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
10: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
9: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।

0: It's 1:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: धर्म पाजी के साथ पता है इस फिल्म में कोई भी काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि तब तक कोई उन्हें जानता ही नहीं था।
1: और क्योंकि आज मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन फिल्मों की बात करें जिनसे पहली बार बड़े बड़े एक्टर्स ने, दिग्गज एक्टर्स ने अपने करियर की शुरुआत की थी। सो धर्म पाजी की पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। 1960 में ये फिल्म आई थी और उनके ऑपोजिट इस फिल्म में थी यस्टरडेज की एक्ट्रेस कुमकुम जी। तो धर्म पाजी ने उस टाइम पे मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि तब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती थी, इंटरव्यू में ये बोला था दैट ही विल ऑलवेज बी वेरी थैंकफुल टू कुमकुम जी, क्योंकि उस टाइम पे ना और कोई एक्ट्रेस उनके साथ काम ही नहीं करना चाहती थी। धर्म पाजी एक न्यू फेस थे और जितनी पॉपुलर एक्ट्रेसेस थी वो किसी न्यू कमर के साथ काम करने में थोड़ा सा हिचकिचाती थी। तो ऐसे हुई थी धर्म पाजी की शुरुआत। अच्छा, और अपनी इस डेब्यू फिल्म के लिए धर्म पाजी को कितने सारे रुपए या फिर कितने से रुपए मिले, ये अभी बताऊंगी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

गतिष्ठा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित मंग था खेलत भुज में लत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Pyari brides, kya dhoond rahi ho apna dream wedding lehenga? To aa jaiye Miss India Bridal Store.
5: Miss India laaye hai latest bridal lehengas, exclusive reception aur party wear dresses and grooms ki sherwanis.
4: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Islip.
6: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
7: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

17, 17, 17 और तीनों का मिला करके 51। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। आज आपसे पहली बार मिल रही हूँ, तो मैंने सोचा कि हमारे जो दिग्गज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है ना हिंदी सिनेमा के, उनकी भी पहली पहली फिल्मों की बात करूँ। अभी मैं आपको थोड़ी देर, पहले

रियलिटी शो में हाल ही में बताया था। सोचो 51 रुपीज, दैट्स इट। पुरानी जीन्स पर काका यानी राजेश खन्ना की डेब्यू फिल्म के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बताऊंगी। वापस आओ श्रेया के साथ।

इस फिल्म की वजह से जतिन खन्ना बने राजेश खन्ना। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और क्योंकि आज मेरी और आपकी पहली मुलाकात है ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उन मूवीज की बात की जाए जिससे अपना डेब्यू यानी पहली बार कैमरा फेस किया था हमारे दिग्गज रेट्रो स्टार्स ने। तो ये फिल्म थी जिससे जतिन खन्ना हमें आज राजेश खन्ना और प्यार से उन्हें काका कहते थे सब इन दी इंडस्ट्री, काका मिले थे। इस फिल्म का नाम है आखिरी खत जिससे अपना डेब्यू किया था राजेश खन्ना जी ने। अच्छा, अब उन्होंने अपना ये नाम क्यों बदला, इसके पीछे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन था। वो क्या था? इतनी आसानी से नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा ना ऐसे आपको सस्पेंस में छोड़ने में मुझे बहुत मजा आता है। तो गाने सुन करके वापस आओ पूरी कहानी ऑफ दिस नेम चेंज मेरे यानी श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
8: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
9: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
8: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हाँ, तो मैं बता रही थी कि कैसे जतिन खन्ना राजेश खन्ना बन गए अपनी डेब्यू फिल्म से, यानी आखिरी खत से। सो एक्चुअली हुआ ये कि जब राजेश खन्ना लॉन्च होने वाले थे इसी फिल्म से, उसके कुछ महीने पहले एक और जतिन खन्ना नाम के हीरो ने अपना डेब्यू किया था विद द फिल्म कॉल्ड जब जब फूल खिले। अब ये वाले जतिन खन्ना को लगा कि भाई सेम नाम तो नहीं हो सकता, इंडस्ट्री में सब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उन्होंने अपना एक स्क्रीन नेम रखा। वो स्क्रीन नेम था राजेश। लेकिन वो सिर्फ राजेश के नाम से फेमस नहीं हुए, प्यार से तो इंडस्ट्री में काम करते। देव साहब का डेब्यू कौन सी फिल्म से हुआ था? ये एक ऐसी फिल्म थी जिससे एक वादा भी आया। ये पूरी कहानी बस कुछ गानों के उस पार। पुरानी जींस पर मेरा नाम है श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
6: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
7: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
6: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
8: Isse apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
6: Moral of the story, number 1 sirf ek hi hota hai. Ek hi hota hai. जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट। It's 2:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सो देव साहब की इस डेब्यू फिल्म से एक दोस्ती की शुरुआत हुई थी, दोस्ती बिटवीन हिम एंड गुरुदत्त साहब। हाय, मेरा नाम है श्रेया और पुरानी जींस पे आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पहली मुलाकात को थोड़ा और खास बनाएं, कुछ ऐसी फिल्मों की बात करें जिससे हमारे रेट्रो स्टार्स ने अपना डेब्यू किया था। तो फिर इस लिस्ट में देव साहब का नाम तो आएगा ही। देव साहब की पहली फिल्म का नाम था हम एक हैं। देव साहब कैमरे के उस पार और कैमरे के इस पार असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका में थे गुरुदत्त साहब। दोनों के बीच में दोस्ती हुई। ये दोस्ती एक वादा भी लेकर के आई जिसको बहुत सच्चाई के साथ देव साहब ने निभाया। ये वादा क्या था आपको तो पता ही है, इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं बताती हूँ। तो उस जमाने के कुछ हैंडपिक गाने हैं, उनको सुन करके वापस आओ, फिर पूरी कहानी। आई प्रोमिस। यू आर लिस्निंग टू पुरानी जीन्स, दिस इज मी श्रेया।

0: कभी तो हंसाए।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। साथ जीतू राज, only on Mirchi, it's hot.
2: Hi, my name is Peter Parker.
3: Oh, Cadence, Spider-Man Brand New Day आ गई है, and for God's sake, please theater में जाकर ही देखो, is what Jeetu Raj will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं, तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है, वो कहीं भी नहीं देगा, and for God's sake, किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers, फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी।
4: Spiders have free life cycle.
3: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो, एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने। वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रिकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
1: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Kandhon se milte hain, kandhe kadmon se kadam milte hain.
8: हजारों लोग एक तिरंगा एक दिल, और इस फीलिंग का नाम है इंडिया डे परेड 2026।
9: संडे अगस्त 9th 1 PM onwards फ्रॉम इसलिन टू एडिसन ऑन ओक ट्री रोड, फीचरिंग लक्ष्यराज सिंह जी महाराज, रिचा अनिरुद्ध, सानिया मल्होत्रा एंड मोर। जॉइन द कल्चरल फेस्ट एंड मेला बिहाइंड उमिया धाम टेम्पल।
10: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

देव साहब की पहली फिल्म से ही एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत हुई जो उनके आखिरी समय तक चली। मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन फिल्मों की बातें की जाए जिससे हमारे उस जमाने के दिग्गज स्टार्स ने अपनी शुरुआत की। अब अगर देव आनंद जी की बात करें तो उनकी डेब्यू फिल्म थी हम एक हैं। अब इस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर थे गुरुदत्त साहब। दोनों के बीच में दोस्ती होती है और साथ में एक वादा आता है। वादा ये कि अगर कभी देव साहब आगे चल करके बड़े एक्टर बने और उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला तो उसके अंडर जो फिल्में बनेंगी उसको डायरेक्ट करने वाले होंगे गुरुदत्त साहब और एक्टिंग करने वाले देव साहब। ये वादा आगे चल करके देव साहब ने निभाया भी। जब उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला ना नवकेतन फिल्म्स, उसके अंडर फिल्म बनी 1951 में बाजी। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले उनके दोस्त गुरुदत्त साहब बने। इंडस्ट्री में ऐसी भी दोस्ती होती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया। वापस आओ, अभी तो बहुत सारी बातें बाकी है।

शमी कपूर साहब मधुबाला जी की खूबसूरती से इस कदर इम्प्रेस थे कि वो बार बार अपने डायलॉग्स ही भूल जाते थे। और क्योंकि मैं आज आपको पहली बार मिल रही हूँ ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन फिल्मों की बात की जाए जिससे पहली बार कैमरा फेस किया हमारे बड़े बड़े दिग्गज स्टार्स ने। तो शमी साहब की पहली साइंड फिल्म जो थी ना, वो थी जीवन ज्योति। लेकिन रेल का डिब्बा वो फिल्म थी जिससे पहली बार उन्होंने कैमरा फेस किया था, क्योंकि उस फिल्म की शूटिंग जीवन ज्योति से पहले शुरू हो गई। अब रेल का डिब्बा में ना वो ऑपोजिट मधुबाला थे, और मधुबाला जी की खूबसूरती के बारे में अगर मैं कुछ कह दूं तो भाई, तो क्या कहते हैं कि दिए को रोशनी दिखाने जैसा कुछ हो जाएगा। शमी साहब वो सो स्मिटन बाय मधुबाला जी इज ब्यूटी कि वो बार बार अपने डायलॉग्स ही भूल जाते थे। फिर मधुबाला जी उनके पास जाती थी, उनको कंफर्टेबल करती थी, दोस्ती की कुछ लाइनें बोलती थी, तब जा करके रेल का डिब्बा शूट हो पाई। वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कहीं अगर मधुबाला जी आंखों के सामने दिख जाती तो क्या हाल होता ना आपका और मेरा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
6: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
5: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
6: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Tera kya hoga, Kalia?
10: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
9: Ab mirchi kha.
11: Radio Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एज राइटर्स जब इनकी पहली फिल्म थी उसके लिए सिर्फ 5,000 रुपए मिले थे। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया, आज आपसे पहली बार मिल रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इंडियन सिनेमा के कुछ लेजेंडरी स्टार्स की पहली पहली फिल्म, पहली पहली राइटिंग, पहली पहली कहानियां, इनके बारे में बात करूँ। सलीम जावेद, इनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी सीरीज आई है विच इज ऑन नेटफ्लिक्स, जिसका नाम है द एंग्री यंग मैन। इस सीरीज में सलीम खान और जावेद अख्तर साहब दोनों ने बताया कि कैसे उनके पीक टाइम पे, जब उनकी सारी लिखी हुई फिल्म्स हिट हो रही थी, फिर चाहे वो शोले हो, जंजीर हो, हाथी मेरे साथी हो एंड सो मेनी ऑफ देम, दीवार हो, तब उन्हें फिल्म के एक्टर से ज्यादा यानी अमिताभ बच्चन जी और राजेश खन्ना जी से ज्यादा पैसे मिलते थे। 21 लाख रुपए वे बैक इन 70s और 80s। लेकिन जब उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी वो एक भूत की कहानी थी, इट वॉज अ गोस्ट स्टोरी, और उसके लिए इन दोनों को 5,000 रुपए मिले थे, यानी 2500 जावेद साहब के और 2500 सलीम साहब के। वहां से 21 लाख तक का सफर विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू इयर्स काफी क्विक और थ्रिलिंग था। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, जल्दी से गाने सुन करके वापस आओ। और किसके डेब्यू की कहानी बताऊंगी ये तो अभी नहीं, गानों के बाद।

शादी की पहली रात का ये गिफ्ट था, पुरानी जीन्स पर उस जमाने की बातें, उस जमाने के गाने और इस जमाने की श्रेया के साथ। आज पहली बार मिल रही हूँ आपको, तो आई थॉट कि क्यों ना कुछ लेजेंडरी स्टार्स की पहली पहले चेक्स, पहले पहले सैलरीज के बारे में बात करूं। तो मैंने सबके बारे में बताया, अब मैं उनके बारे में बताने वाली हूँ जिनकी ये पहली सैलरी नहीं थी लेकिन शादी की पहली रात। शादी की पहली रात खूबसूरत मीना कुमारी और उनके शौहर कमाल अमरोही साहब। कमाल अमरोही ने उनको शादी की रात कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देना चाहता हूँ जिससे पूरी दुनिया तुम्हें याद रखेगी, और वो तोहफा तुम्हारी खूबसूरती पे बनी एक फिल्म होगी। ये फिल्म बनने में 14 साल लग गए लेकिन कमाल अमरोही ने अपना वादा निभाया। उन्होंने मीना कुमारी पे बनाई पाकीज़ा, जिसे हर कोई आज भी याद करता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया, गाने सुन करके कम बैक राइट हियर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतूराज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव फ्री लाइफ साइकिल।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में एक पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है, क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने, वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
9: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
10: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
11: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground।
10: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है।
10: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

दोस्तों, मंडे का मूड भी ना कभी कभी बिल्कुल बॉलीवुड कैरेक्टर जैसा लगता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। तो जी हाँ, कभी कभी लगता है कि हम रणबीर कपूर फ्रॉम वेकअप सिड है, यानी थोड़े लॉस्ट, थोड़े स्लीपी। और कभी कभी लगता है कि कल होना हो के अमन है, फुल ऑन स्माइल के साथ, रेडी टू टेक द डे ऑन। वैसे यार, मंडे का ना रियल ट्विस्ट ये है कि आप डिसाइड करते हो कि आज का रोल क्या होगा, स्लो स्टार्ट होगा या फुल फिल्मी एनर्जी। तो आज का सीन सिंपल है, अपने आप को हीरो मोड में डालो तो बैकग्राउंड म्यूजिक अपने आप बजने लगेगा। और मुझे जरूर बताना कि आपका मंडे कौन सा बॉलीवुड कैरेक्टर जैसा होता है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मेरा जो मंडे मोड है ना, उसके लिए जो परफेक्ट गाना है वो मैं अभी आपके लिए बजाने वाली हूँ, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscaba la puscaba la sacaba la.
2: Rábala.
1: Murga, murga. La virpa la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hi. You से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
3: हेलो।
4: हाय, ये तो फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4198-3983।
5: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवीद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
3: तो वही मैं सुधरा था, मतलब।
4: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
3: हाँ जी।
4: कुकड़ू को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
10: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
9: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
11: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
12: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
13: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
12: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
13: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington.
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
17: Listener MI, back to back gana sunega.
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
18: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
19: कितने बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ कॉफी पीने निकले थे लेकिन वापस आते आते जिंदगी के बड़े डिसीजंस भी ले लिए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और नाम सुना मुसाफिर कैफे। और मुझे लगा कि यार कैफे का असली मेन्यू कॉफी थोड़ी ना होता है, वो तो कॉन्वर्सेशंस होते हैं जी हाँ। नेटफ्लिक्स पर आई नई सीरीज मुसाफिर कैफे, जिसमें विक्रांत मेसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना नजर आ रही है। कहानी तो वैसे कैफे से शुरू होती है, लेकिन असल में बात उन लोगों की है जो जिंदगी के सफर में मिलते हैं, कुछ पल साथ रहते हैं और फिर हमारी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि यार कॉफी के कॉन्वर्सेशंस ही ऐसे होते हैं, कोई पहली बार आई लाइक यू बोलता है और कोई कभी कभार मुझे बस एक बात बतानी है से शुरू करता है। किसी टेबल पर दोस्ती शुरू होती है तो किसी दूसरे टेबल पर टेक केयर बोल के लोग अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। कभी किसी को नई जॉब मिलती है, कभी स्टार्टअप का आइडिया बनता है, कभी शादियां फिक्स होती है, तो कभी बस दो दोस्त 3-4 घंटे तक दुनिया भर की बातें करते रहते। लेकिन पता है सबसे मजे की बात क्या है कि सालों बाद ना कॉफी की टेस्ट याद रहे या ना रहे, लेकिन उस टेबल पर हुई हर कॉन्वर्सेशन वर्ड बाय वर्ड याद रहती है। वैसे दोस्तों आपने भी ऐसी कॉन्वर्सेशंस कई बार की होगी, तो ऐसे किसी कैफे का नाम अगर आपको रखना हो तो वो क्या होगा? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और मुसाफिर कैफे क्या आपने भी देखी जरूर बताना। और तब तक ऐसा बॉलीवुड का गाना सुनते हैं जो हर कॉफी डेट और हर दिल की बात को और भी खूबसूरत बना देता है। ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
20: शशि वो मैनहट्टन है।
0: मैनहट्टन
21: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
20: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुरा कर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
5: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी, एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
6: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।

0: Tickets 4:30 p.m. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey, have a funky time.
2: पहले बॉलीवुड में सिर्फ फ्राइडे का वेट होता था, लेकिन अब तो ट्रेलर रिलीज भी एक मिनी इवेंट बन चुका है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आजकल किसी फिल्म का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया ना दो टीम्स में डिवाइड हो जाती है। एक टीम कहती है कि मुझे तो यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाना है, और दूसरी टीम कहती है कि नहीं नहीं पहले रिव्यूज आने दो। और मुझे ना इस जनरेशन की एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है कि पहले हम सिर्फ फिल्म देखते थे, लेकिन आज हम ट्रेलर ब्रेकडाउन देखते हैं, फैन थियोरीज पढ़ते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक नोटिस करते हैं और टीजर के एक फ्रेम पर भी डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। और शायद इसीलिए बॉलीवुड सिर्फ मूवीज नहीं कॉन्वर्सेशंस भी क्रिएट करता है। वैसे आप भी बताइए दोस्तों कि आप किस कैटेगरी में आते हो, ट्रेलर देखते ही टिकट बुक करने वाले या पहले आप रिव्यू सुनते हो। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और चलिए अब ट्रेलर से सीधा पिक्चर की दुनिया में चलते हैं एक जबरदस्त बॉलीवुड के गाने के साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
7: दिस गोल्डन आवर इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क। सुनहरी होगी ड्राइव, जब तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी से सुनहरी होगी हर वाइब।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और सूरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धी के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कुछ फिल्मों का नाम सुनते ही उनकी कहानी नहीं उनके एहसास याद आ जाते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज एक ऐसी मूवी की बात हो रही है, आवारापन। बॉलीवुड के उन फिल्म्स में से है जिसे वक्त के साथ लोगों ने और ज़्यादा प्यार दिया। डार्क इमोशंस, सोलफुल म्यूजिक और वो इमरान हाशमी का एरा यार, जब हर फिल्म के गाने ना सीधा प्लेलिस्ट में परमानेंट जगह बना लेते थे, क्योंकि वो गाने सिर्फ हिट्स नहीं होते थे, वो लेट नाइट ड्राइव्स, हेडफोन्स और अपनी ही दुनिया का एक साउंड ट्रैक बन जाते थे। और अब जब अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये आवारापन सुनाई देता है ना, तो लगता है कि जैसे एक नई आवाज़ उन कहानियों को फिर से महसूस करने का मौका दे रही हो। क्योंकि कुछ मेलेडीज़ की खूबसूरती ही यही होती है कि जनरेशंस बदल जाती है लेकिन इमोशंस वही रहती है। वैसे आप भी बताइए दोस्तों कि अगर मैं आवारापन बोलूँ तो सबसे पहले आपको उस फिल्म का कौन सा गाना या मोमेंट याद आता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और चलिए, एक ऐसी आवाज जो पुरानी यादों को नए अंदाज में छू जाती है, अरिजीत सिंह की आवाज में सुनते हैं ये आवारापन, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल।
2: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि बिराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
1: विनीत जी, नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
1: हाँ, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने हैं बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
1: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
2: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बचा जाएगा।
1: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
1: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
1: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
1: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर, मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़े जाऊंगा यार।
1: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे।
2: हेलो हेलो,
1: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
1: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अरे पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
2: अरे कॉफिन ऑफिन कर तो यहाँ क्यों लेके आए तुम?
3: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया सर, आप बुरा मत मानिए।
2: अच्छा भैया
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: इस फ्रेंडशिप डे प्लान सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप तक मत रखो।
8: गेट रेडी फॉर दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0. ज्योत्सना शर्मा एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टिवेट टैलेंट्स ब्रिंग यू एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग विद लाइव बैंड एंड सिंगर्स एंड ओपन डांस फ्लोर एंड अ प्रीमियम 3-course डिनर, ऑल जस्ट फॉर $65. फ्राइडे ऑगस्ट 7th, 7 PM एट रॉयल अल्बर्ट्स पैलेस फोर्ट्स। बुक नाउ, कॉल ज्योत्सना एट 7329972409।
9: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
12: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक। They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
13: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jaano.
14: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
15: Tera kya hoga, Kalya?
16: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
15: Ab mirchi kha.
17: Radio Mirchi. It's hot.
18: Sham Sardar, let's do nautanki, have a funky time.
19: शुक्र है, शुक्रवार आ चुका है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और फ्राइडे ना दोस्तों सिर्फ वीक का एंड नहीं होता है, कभी कभी नए आइडियाज की बिगिनिंग भी होती है। क्योंकि जब दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है ना, तभी हम वो सवाल पूछ पाते हैं जो बिजी वीकेंड्स में कहीं ना कहीं रह जाते हैं, कि क्या मैं सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहा हूं, या क्या होम बाइंग का ये सही वक्त है, या फिर मेरे एग्जिस्टिंग मॉर्गेज के बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अगर ये सवाल आपके भी माइंड में है तो आज का सेगमेंट बिल्कुल आपके लिए है। मेरे साथ है मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
20: गुड इवनिंग मिर्ची, दिस इज योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। वेलकम टू योर रेजिडेंशियल मॉर्गेज अपडेट। If you have been waiting for the perfect time to buy a home, today's market is good. Reminder that timing the market is much harder than preparing for it. Mortgage rates continue to move within a relatively narrow range with the day-to-day changes driven by economic data, inflation expectation, and investor sentiment. While mortgage rates remain a little higher than the historic lows we saw a few years ago, buyers are adapting and many are discovering that waiting for lower rates may mean facing higher home prices or increased competition. A well-structured mortgage, the right down payment strategy, and understanding your monthly budget, and often more important than trying to predict where rates will be next month. So friends, buying your dream home, advice is free, pre-approval is free. Call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.5%. 20-year fixed mortgage rate, 6.375%. 15-year fixed mortgage rate, 5.875%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. And it is lionmtg.com. At Lion Mortgage, we offer conventional loans. We offer FHA loans. We have got great rates on jumbo loans. We also offer DSCR loans, bank statement loans. You name it, we have got a mortgage waiting for you. So friends, once again, buying your dream home or refinancing, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
21: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
3: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
2: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
3: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
5: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
8: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
9: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskurakar peesti, apne ghar ke aangan mein din bhar un masalon ko sehlaye, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
10: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
11: Batting तो काफी सारे करते हैं. विराट एक ही होता है.
12: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
11: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
13: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
11: Moral of the story, number one, सिर्फ एक ही होता है. एक ही होता है. जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक, न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: It's 5:30 PM. Mid-Jeet time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey. Have a funky time.
2: कुछ लोगों को देखते ही ना लगता है कि इन्हें अलग दिखने के लिए कभी एफर्ट्स ही नहीं करने पड़ते होंगे। वो कहते हैं ना, सम थिंग्स शाइन विदाउट ट्राइंग। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और कभी किसी की स्माइल, कभी उनका कॉन्फिडेंस, तो कभी बस उनकी प्रेजेंस। और वही बात चीज़ों पर भी लागू होती है। मतलब कुछ चीज़ें ना ट्रेंड्स के साथ नहीं चलती, वो हर दौर में अपनी चमक खुद लेकर आती है। और शायद इसीलिए डायमंड्स को सिर्फ ज्वेलरी नहीं, टाइमलेस एलिगेंस कहा जाता है। और अगर आप भी अपनी कलेक्शन में वो हमेशा वाली चमक ऐड करना चाहते हो तो तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, अवेल अप टू 25% ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, और ओल्ड गोल्ड अबाव 18 कैरेट एक्सचेंज करने पर 0% डिडक्शन। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। और दोस्तों मुझे भी बताना कि आपके हिसाब से किसी इंसान की सबसे खूबसूरत क्वालिटी क्या होती है, उनकी स्माइल, उनका कॉन्फिडेंस या उनका काइंडनेस। टेल मी ऑन इंस्टाट @rjmirchisiddhi SIDDHI। और तब तक एक ऐसा गाना सुनते हैं जिसकी चमक कभी पुरानी नहीं होती। Only on Mirchi, it's hot. Whoa!

0: साथ जीतू राज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेक बैटनो also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland in this film it's a little different in fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से Tom Holland के shoulders पर rest करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो also there's a particular scene between John Bernthal अर्थात Frank Castle aka Punisher and Tom Holland अर्थात Peter Parker जो theater से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा also if you have kids around you enjoy it fully क्योंकि कई बार बच्चे Bollywood के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं and it's all required in Spider-Man brand new day but I must give you a disclaimer अगर तूने Spider-Man के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं तो प्लीज YouTube पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ Spider-Man की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन Instagram @MirchiJeetuRaj जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू Instagram @MirchiJeetuRaj फॉर नाउ Spider-Man brand new day बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness. Guaranteed. Deep cow, to jano.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
9: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन
11: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
12: कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं
13: हजारों लोग एक तिरंगा एक दिल और इस फीलिंग का नाम है इंडिया डे परेड 2026
14: संडे अगस्त 9th 1 PM ऑनवर्ड्स फ्रॉम इसलिन टू एडिसन ऑन ओक ट्री रोड फीचरिंग लक्ष्मीराज सिंह जी महाराज रिचा अनिरुद्ध सानिया मल्होत्रा एंड मोर जॉइन द कल्चरल फेस्ट एंड मेला बिहाइंड उमिया धाम टेम्पल
15: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा
16: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम का लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है ओमकारा मूवी का बीड़ी जलाई ले इस गाने से। वैसे तो यार स्क्रीन पर बिपाशा बासु का फुल देसी स्क्वैग और रस्टिक डांस और एकदम रॉ एनर्जी तो हमें सबको बहुत पसंद आई थी, पर पर्दे के पीछे विशाल भरद्वाज और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था ऑथेंटिसिटी का, क्योंकि सेट को ना इंटेंशनली ग्लैमराइज नहीं किया गया था बल्कि धूल मिट्टी यानी रियल यूपी फील देने के लिए बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स किए गए थे कि यार लगे कि ये यूपी का सेट है, मतलब मजा मस्ती होने वाला है। तो सोचिए दोस्तों, ये गाना पॉलिश नहीं, पर्पसफुली इम्परफेक्ट बनाया गया था ताकि रियल लगे। तो मतलब बात तो बहुत सिंपल है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी हिट हो जाती है। तो ऐसे ही पर्दे के पीछे के किस्सों के लिए मुझे जरूर बताइए कि ऐसा कौन सा गाना है जिसके पर्दे के पीछे के किस्से आपको जानने। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं सुनीति चौहान की आवाज में बीड़ी जलाई ले फ्रॉम द मूवी ओमकारा राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और आज का हंगामा आ रहा है दिल धड़कना दो मूवी के गल्ला गुड़िया गानों से। वैसे यार ये गाना स्क्रीन पर तो फुल ऑन फैमिली मस्ती लगता है, मतलब सब नाच रहे हैं, कैमरा घूम रहा है, एनर्जी नॉन स्टॉप है। पर पर्दे के पीछे असली कमाल ये था कि डायरेक्टर जोया अख्तर ने इस गाने को एक टेक में शूट किया है। जी हाँ, इसके लिए हर जो एक मूवमेंट था वो प्लान था, हर कैमरा टर्न प्लान था, हर एक्टर की एंट्री एग्जिट और कोरियोग्राफी डिटेल में रिहर्स की गई थी। तो कैमरा जब चालू हुआ यानी रोलिंग जब चालू हुई, उसके बाद पूरा गाना खत्म होने के बाद ही वो रोलिंग बंद की गई थी। और जोया अख्तर ने खुद कहा था कि इतनी प्लानिंग और मैनेजमेंट हुई थी तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। तो सोचिए दोस्तों, हम तो कभी कभी ऑफिस में अपने बॉस को अगर छुट्टी मांगनी है तो एक स्ट्रेट वॉइस नोट भी एक टेक में रिकॉर्ड करके नहीं भेज पाते, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा गाना, पूरा का पूरा कास्ट, मूविंग कैमरा, डांस, टाइमिंग, एक्सप्रेशन, सब कुछ एकदम सिंक में चल रहा था। मतलब यार स्क्रीन पर जो फुल चिल फैमिली वाइब लग रही थी ना, उसके पीछे स्टॉप वॉच लेवल डिसिप्लिन और टीम वर्क था। तो ये बात तो बहुत जाहिर सी है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सबसे नेचुरल दिखने वाली चीज उसके पीछे सबसे ज्यादा प्लानिंग होती है। तो दोस्तों आप भी मुझे बताना कैसा लगा आपको ये पर्दे के पीछे का किस्सा, और ऐसे ही गानों के पर्दे के पीछे के किस्से जानने के लिए मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये वन टेक का कोरियोग्राफ किया हुआ गाना सुनते हैं, गल्ला गुड़िया फ्रॉम दिल धड़कने दो, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. ¡Cabana! ¡Murga, murga! ¡La vida para la murga!
0: ¡Mirchi, murga!
2: ¿Aló?
3: ¡Hi! से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो।
3: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,9,83।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
2: वही मैं सुधरा था, मतलब।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची। It's hot.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
10: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
11: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully red, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
13: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
14: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
15: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी और स्वागत है आपका अगस्त के इस नए मंथ में। वैसे हम सब ने इस वीकेंड फ्रेंडशिप्स डे तो मनाई ही है, तो आप सबको भी हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। जिन्होंने भी अपने दोस्तों को यारों को कॉल किया है, उनके लिए गाने डेडिकेट किए हैं, उन सबको वंस अगेन हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। और फिलहाल हमारा गोल्डन आवर शुरू हो चुका है और आपको तो पता ही है कि गोल्डन आवर पे बातें होती है हमारे गोल्ड डिकोडर्स सीरीज में सोने की, जहां होती है थोड़ी चमक थोड़ी समझ। और पिछले दो क्वार्टर्स में गोल्ड ने काफी रोलर कोस्टर राइड दिखाई है। साल की शुरुआत रिकॉर्ड हाई से हुई थी, फिर जियोपॉलिटिक्स, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस की वजह से काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने मिले हैं। लेकिन अभी कुछ हफ्तों से रेट्स कंपैरेटिवली स्टेबल है, लेकिन जब भी इतनी मार्केट में वॉलिटिलिटी होती है ना, तो हमारे जो एक्सपर्ट है बॉबी बंसल जी, वो हमें आकर सही राह दिखाई देते। तो चलिए आज बॉबी जी से ही पूछते हैं। नमस्ते बॉबी जी, पहले तो स्वागत है आपका आज के शाम शानदार में।
1: नमस्कार, हैप्पी इवनिंग टू यू सिद्धि जी एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू एंड एवरीवन एल्स आल्सो।
0: थैंक यू सो मच बॉबी जी। और देखिए, जब भी गोल्ड की बात होती है ना, हमारे सबसे पहले दोस्त आप ही हो, क्योंकि जब कभी भी हमें क्वेश्चन आते हैं, जब कभी कोई बाइंग से रिलेटेड या फिर ईएमआई से रिलेटेड या फिर ऑफर से रिलेटेड कुछ भी पूछना होता है, हम आप ही की तरफ दौड़े चले आते हैं। तो आज का सवाल भी उसी तरह है कि ये जो मतलब फिलहाल मार्केट में एक पॉज है, क्या ये एक नई फेज की शुरुआत हो सकती है? क्या इसका कोई सिग्नल हो सकता है?
1: यदि जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछले एक साल में आप रोज अपडेट करते करते खुद एक्सपर्ट हो गई हैं और आपको ट्रेंड्स का बिल्कुल एकदम करंट आइडिया लग चुका है। तो ये जिस बोलते हैं ना खामोशी, आने वाले तूफान का कहीं संकेत ना हो, क्योंकि देखिए अगर पिछले साल आज ही के दिन की बात की जाए, गोल्ड वॉज अराउंड $3,300, $3,300 पर ट्रायंस के करीब पिछले अगस्त में ट्रेड कर रहा था 2025 में। आज $4,050, $4,050 पर ट्रायंस, ऑलमोस्ट 20% की एप्रिसिएशन अभी भी है। लेकिन अगर 2026 के बिगनिंग की बात की जाए तो गोल्ड हैड गॉन अप टू $5,600 पर ट्रायंस। सो देखिए, मुझे लगता है कि करेक्शन है। ऊंचाई कहाँ होगी ये हमें नहीं पता, लेकिन जब गोल्ड पीक पे गया था तब भी यही डिस्कशन होता था कि इट हैज टू करेक्ट इटसेल्फ बिफोर इट गोज टू अनदर हायर लेवल एंड हायर लिमिट्स। सो ये अपनी ऊंचाइयां दोबारा टच करे। और दिवाली, धनतेरस, पुष्य नक्षत्र पे हमको जब गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो, तब हम सोच रहे हो काश हमने मौके का सही फायदा लिया होता। उसके लिए राज चोज की फाइनेंसिंग ऑप्शन, जिसमें आप 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी एंड GIS सर्टिफाइड डायमंड, शुद्धता से भरा सोना। गोल्ड ज्वेलरी हर जगह मिलती है, लेकिन उसकी प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहां से किस तरह का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और किस तरह की फाइनेंसिंग ऑप्शन है, जिसमें आप राज चोज के स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन, जिसमें क्रेडिट कार्ड में 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए अप्रूव होने पे 22 कैरेट की ज्वेलरी, कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GIS सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड प्लैटिनम की रिंग में सेट हो, किसी भी तरह का खूबसूरत सा गहना आप घर ले जाए और 9 किस्तों में पैसे दे। कैसे? आइए rajchose.com पे विजिट करके एनीवेयर विद इन यूनाइटेड स्टेट्स टू शिप विद इजी रिटर्न्स एंड एक्सचेंज पॉलिसीज गोल्ड में rajchose.com की टीम के साथ इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी इवनिंग टू ऑल।
0: थैंक यू बॉबी जी। एंड वंस अगेन एक बात तो आपने फिर एक बार क्लियर कर दी है कि गोल्ड को समझना, गोल्ड के रेट को देखने जितना ही जरूरी है। तो हर दिन आप हमें गोल्ड का ना सिर्फ रेट ही बताते हो, बट गोल्ड को धीरे से समझने में मदद भी कर देते हो, और इससे बड़ी खूबसूरत बात क्या हो सकती है। तो इसी तरह हर दिन एक नया एंगल लेकर आएंगे दोस्तों, क्योंकि गोल्ड डिकोडर में होती है थोड़ी चमक थोड़ी समझ। और इसी के साथ आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ईकेजी एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स.
2: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स. ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस. फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
8: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
9: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण. शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ. शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 7323578200. जय गुरुदेव.
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
11: इस फ्रेंडशिप डे प्लान सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप तक मत रखो.
12: गेट रेडी फॉर दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0. ज्योत्सना शर्मा एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टिवेट टैलेंट्स ब्रिंग यू एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग विद लाइव बैंड एंड सिंगर्स, एन ओपन डांस फ्लोर एंड अ प्रीमियम 3-course डिनर, ऑल जस्ट फॉर $65. फ्राइडे ऑगस्ट 7th, 7 PM एट रॉयल अल्बर्ट्स पैलेस फोर्ट्स. बुक नाउ, कॉल ज्योत्सना एट 7329972409.
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा.
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
16: 6:30 PM, Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
17: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
18: कुछ ऐसे एल्बम्स जो आज भी सुपर हिट है. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि. और बॉलीवुड में ना कुछ ऐसे एल्बम्स बने हैं जिसमें यार एक से एक गाना एक से बढ़कर एक है. मतलब एक 2008 में जो एल्बम आई थी जाने तू या जाने ना मूवी जो बनी थी, उसका हर एक गाना वंडरफुली था. कंपोजर AR रहमान का ऑब्वियसली कंपोज्ड म्यूजिक था, तो हर एक गाना एक से बढ़कर एक होना ही चाहिए था. लेकिन जनरली AR रहमान के जो गाने होते हैं वो बहुत ही यू नो माइल्ड टोन, अमेजिंग, सूदिंग टू हियर होते हैं. लेकिन जब उन्होंने जाने तू या जाने ना का म्यूजिक बनाया था, दैट वाज एंटायरली अ जेन जी थीम. जी हाँ, पप्पू गान डांस वाला वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम जाने तू या जाने ना एल्बम, जो कि यार तभी ऑलरेडी जेन जी एंथम बन गया था, बिफोर जेन जी वॉज इवन अ टर्म. जी हाँ, मतलब ये जो एक गाना है वो इंस्पायर्ड था बाय एवरी गर्ल्स अनोइंग क्यूट क्रश, जो कि एकदम परफेक्ट था. मतलब मस्क्यूलर था, पॉपुलर था, बस उसको नाचना नहीं आता था. और एक्चुअली ना पप्पू ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो सच्ची में रियल लाइफ बॉलीवुड पर्सनैलिटी पर्सनालिटी से इंस्पायर्ड है. आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम्स, बट अगर आप गेस कर सकते हो तो मुझे जरूर बताइए कि बॉलीवुड में पप्पू जैसा कैरेक्टर कौन है. टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI. और चलिए सुनते हैं ये अमेजिंग सा गाना पप्पू कान डांस फ्रॉम जाने तो या जाने ना का एल्बम जो 2008 में बनी थी, जिसके सिंगर है बेनी दयाल और सतीश सुब्रमण्यम, कंपोजर है AR रहमान. और हाँ यार, ब्लेजी का वो रैप हम कैसे भूल सकते हैं. वैसे वो जो रैप था वो एक रात पहले ही बनाया गया था बिफोर द फाइनल मिक्स. तो चलिए सुनते हैं दिस एवरग्रीन सॉन्ग पप्पू कान डांस वाला ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Inefficient,
4: very complex,
5: clumsy hoy,
6: confusion hi confusion.
7: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
8: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
9: Pyari brides, kya dhoond rahi ho apna dream wedding lehenga? To aa jaiye Miss India Bridal Store.
10: Miss India laaye hai latest bridal lehengas, exclusive reception aur party wear dresses and grooms ki sherwanis.
9: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Iselin.
11: Kandhon se milte hain, kandhe kadmon se kadam milte hain.
12: हजारों लोग एक तिरंगा एक दिल और इस फीलिंग का नाम है इंडिया डे परेड 2026.
13: संडे अगस्त 9th 1 PM onwards from Iselin to Edison on Oak Tree Road featuring Lakshiraj Singh Ji Maharaj, Richa Anirudh, Sanya Malhotra and more. Join the cultural fest and mela behind Umya Dham Temple.
14: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
15: Tera kya hoga Kalia?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
15: अब मिर्ची खा।
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: की टाइम।
1: कुछ ऐसे एल्बम्स जिनके गाने एक से बढ़कर एक है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और बात हो रही है 2008 के एल्बम की, जाने तू या जाने ना, जिसको कंपोज किया गया है AR रहमान ने। और दोस्तों इसके हर एक गाना एक से बढ़कर एक है, और पप्पू गान डांस साला तो हमारा फेवरेट है ही, बट अनादर सॉन्ग, अनादर ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम इज नजरे मिलाना, नजरे चुराना। जी हाँ, सिंगर्स AR रहमान, बनी दयाल, सतीश सुब्रमण्यम, अगेन कंपोज बाय AR रहमान। ये जो गाना बनाया था ना, वो बनाया गया था टू मिरर जेन वाई रिलेशनशिप, मतलब कंफ्यूजिंग, क्यूट से, कॉम्प्लिकेटेड से, और इस तरह से फिल्माया गया इस गाने को कि बस कोई कोरियोग्राफी नहीं थी, बस वाइब्स थे, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ऐसा लगता था कि चलो सारे दोस्त एक साथ गए हैं, म्यूजिक इज ऑल्सो वेरी वेरी लाइट, और एक साथ जब हम सारे दोस्त मिलते हैं, कोई ट्रिप पे मिलते हैं, हाउस पार्टी में मिलते हैं, तो एक माहौल जो बन जाता है और गाने गाने का जो मन करता है ना, बस वही माहौल इस गाने ने बनाया था। और शायद इसीलिए काफी बार जब हम अपने दोस्तों के साथ ट्रिप्स पे जाते हैं तो ये गाना जरूर सुनते हैं, नजरे मिलाना, नजरे चुराना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ जाने तू या जाने ना एल्बम, राइट फॉर यू हियर ओनली ऑन मिर्ची। वैसे दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट अनादर एवरग्रीन एल्बम जिसके ऑलमोस्ट सारे गाने बहुत ही अमेजिंग है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए नजरे मिलाना, नजरे चुराना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कुछ ऐसे एल्बम्स जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बातें हो रही है कुछ ऐसे एल्बम्स के बारे में जिसका यार हर एक गाना अमेजिंग है। तो आज 2008 के जाने तो या जाने ना के बारे में बात हो रही है, जिसमें यार इतने सारे गाने हैं और हर एक गाना उतना ही एवरग्रीन है। कम्पोज बाय AR रहमान, और इस एल्बम के हमने पप्पू कान डांस साला, नजरे मिलाना, नजरे चुराना, इन गानों के बारे में तो बात की ही है। बट एक ऐसा गाना है जिसके वजह से अदिति नाम की लड़की फेमस हो गई। जी हाँ, कभी कभी अदिति संग बाय राशिद अली। दोस्तों यार ये वो गाना है ना कि अपनी जो दोस्त है अदिति, अगर आपकी भी कोई दोस्त है अदिति, तो ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि आपने कभी उसको ये गाना डेडिकेट नहीं किया है। जी हाँ, अदिति रूठ जाए, अदिति सैड हो जाए, तो बस कभी कभी अदिति बजा दिया जाए। वैसे तो यार ये जब गाना बनाया गया था तब राशिद अली कंप्लीटली नए थे। वो बस एक लंडन बेस्ड गिटारिस्ट थे जो रहमान जी के साथ जैम किया करते थे। लेकिन तब AR रहमान ने डिसाइड किया कि इस गाने के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि ये गाना एक यूथफुल ट्रैक है, उनकी आवाज बहुत ही अमेजिंग लगेगी, एक फ्रेश वॉइस मिलेगा इस ट्रैक के लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसी के साथ राशिद अली अपना पहला गाना गाएंगे, कभी कभी अदिति। तो चलिए सुनते हैं कभी कभी अदिति फ्रॉम द मूवी जाने तू या जाने ना। वैसे दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो ऐसे कौन से एल्बम्स है जो आपको पसंद है, जिसका यार हर एक गाना बहुत अमेजिंग है, उस एल्बम के बारे में हम बातें करेंगे राइट हियर ऑन मिर्ची। तो जल्दी से DM कीजिए ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI, और तब तक के लिए जाने तू या जाने ना का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Nerdy. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vida fala burga.
1: Nerdy, burga. हेलो
2: हेलो हाँ जी बोलिए
1: क्या बोलूँ जी
2: आप बोलिए ना
1: कॉल आपने किया आप बोलिए
2: कॉल मैंने किया है हेलो
1: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
2: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
1: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
2: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
1: नींद में है क्या
2: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
1: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
2: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
1: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
2: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है हेलो
1: फिर कोई
2: यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
1: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
2: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
1: फोन नहीं कर रहा अभी
2: आप देखिए बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से है ना मेरे चप्पल लेके आ रहा ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
1: चप्पल
2: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों
1: आराम कर दिया तुम
2: जीना बता रहा हूँ यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
1: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
2: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: इट पका
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155 लॉग ऑन टू lionmtg.com
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी
9: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस
8: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस कृष्णा ज्वेलर्स लेडीज फर्स्ट चॉइस
10: सुनो ब्राइड अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
11: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
11: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन
12: एट तनिष्क नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
13: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
14: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
13: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit AIMS. Education.edu.
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
16: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं विराट एक ही होता है
17: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड
16: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं पर बच्चन एक ही होता है
18: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
16: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन सिर्फ एक ही होता है
19: एक ही होता है
4: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

एक बात तो माननी पड़ेगी कि न्यू जर्सी की समर ना घर में बैठने के लिए बनी ही नहीं है। शमशांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही होती है, फिर चाहे फार्मर्स मार्केट हो, फूड फेस्टिवल्स हो, बीच ट्रिप्स, इवनिंग वॉक्स, कॉन्सर्ट्स, काउंटी फेयर्स, या बस मौसम को देखते रहना। वैसे यार आजकल ना मन करता है कि घर थोड़ा लेट ही चलते हैं, क्योंकि समर की सबसे प्यारी बात ही ये होती है कि प्लान्स ना बहुत बड़े होने की जरूरत नहीं। कभी एक आइसक्रीम, कभी एक की वॉक, कभी बस कार की विंडोज डाउन करके बॉलीवुड सुनते हुए ड्राइव, और शाम यादगार बन ही जाती है। तो इस हफ्ते न्यू जर्सी चैलेंज ये है कि एक नई जगह जरूर एक्सप्लोर कीजिए, और अगर आपके पास कोई हिडन जेम हो, फिर चाहे वो कॉफी शॉप, पार्क या सनसेट स्पॉट हो, तो मुझे जरूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए न्यू जर्सी की इस खूबसूरत समर इवनिंग को बॉलीवुड के सुरों से और भी रंगीन बनाते हैं विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन.
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
4: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
6: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ.
7: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
8: ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ.
9: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ. ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈ. ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ. ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ. ਕਾਮ ਅਨੇਕ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1, ਜ਼ੋਹੋ 1. ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1.
10: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन.
11: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
12: It's 7:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

बॉलीवुड की एक अच्छी बात यह है कि सिंगर्स का काम ना कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज भी एक अच्छी आवाज सीधा दिल तक पहुंच ही जाती है, चाहे रोमांटिक हो, सुकून भरी हो या थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव। आज के गाने लाउड होने से भी ज्यादा लास्टिंग होने पे फोकस कर रहे हैं और ऑनेस्टली ये फेज काफी रिफ्रेशिंग लगता है। तो आप भी बताना कि आपको बॉलीवुड सॉन्ग में सबसे ज्यादा क्या कनेक्ट करता है, लिरिक्स या वॉइस? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत आवाज का ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Mirchi Bioscope. Saad Jeetu Raj. Only on Mirchi. It's hot.
2: Hi, my name is Peter Parker.
3: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you kyunki is film mein kahin chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kahin aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
4: spiders have three life cycles
3: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeetu Raj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओह आल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeetu Raj जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है Jeetu Raj ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची Jeetu Raj फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय Jeetu Raj विद फोर मिर्चीज
1: साथ Jeetu Raj ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
8: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
8: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road Islington
9: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी हर ड्राइव बनेगी यादगार
10: तेरा क्या होगा कालिया
11: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
10: अब मिर्ची खा
12: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

मिर्ची मंडी ग्रूव्ड ऑलरेडी लॉक और वीक का रिदम दोस्तों सेट हो चुका है विद दिस शो शाम शानदार लाइव विद योर वन एंड ओनली मिर्ची सिद्धि। तो दोस्तों अब वक्त आ चुका है कि मैं आपको टाटा बाय बाय सायोनारा कह दूं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, हमारी रोशी आने वाली है लव के कुछ फंडे लेकर। क्योंकि यार अगर आज के लोकल अपडेट्स म्यूजिक ओटीटी पिक्स के साथ अगर आपका मूड सेट हो चुका है तो थोड़ी यार लव लाइफ पे भी ध्यान दे दो विद रोशी के फंडे। तो कहीं ना जाइए, बने रही हमारे साथ right here on Mirchi. This is Mirchi Siddhi signing off.